लख कुड़िया लखदा लख ठगिया पैना मिया रात दिन जीना तको पहो कतिया बमण वटे ओ बकरा रिन खाए सब रखे पाए होए पुराने सुटिए पीख पाइए हो नानक तग न तुटई जे तक हुवे जो

0: पहला बहु प्रभाव प्रभाव के प्रतरंग न जाए तो ती जप माली तान मली शाखाई अंतर पूजा पड़े कते बसंजन तुरका पाई सोदी ले पखंडा नाम ले जय करंदा भला पहला
1: मानस खाने करन वाद छुरी बगा।

करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हो गए प्रणाम मलेश ताले पूजे प्राण पाखिया का कुठा बकरा खाने चौकी ऊपर किसे न जाना देखे चौका कटी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे हो अन असाडा फिटे तन फिटे फेर करे मन जूठे चुनी परेन कहो नानक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली

0: पटना से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ज्ञान अमृत।

0: हुक्मरान न तो कोई शस्त्र चीर सकता है, ना ही अग्नि इसने जला सकती है, ना ही जल इसने पिन सकता है, ते ना ही हवा इसने बिखरा सकती है।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सर्वन कर दिया भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

इतना समाप्त फरमाओगे। इस तो इलावा समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते पेश कीते जाणगे। सो इस सन अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। कुछ पलों बाद सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो संस्कृत च समाचार।

0: सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितम् अभवत्। बिहारे गंगा, गंडक, कोशी, चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरं अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगा नद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरं अतिक्रमति, येन अधोवर्ती क्षेत्रेषु उच्च सतर्कता वर्तते। उत्तर प्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि विद्यक संस्थावां नूं विद्यार्थियों नूं एक जिम्मेवार नागरिक बनाउण ते ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत नूं नशा मुक्त बनाउण लई 3 सालां दा रोडमैप पेश कीता। कोला मंत्रालय ने पंजाब दे थर्मल प्लांटां विच बिजली उत्पादन घटण करके केंद्र तों कोले दी सप्लाई घट जाण संबंधी मीडिया खबरां दा खंडन कीता। राज जैव विभिन्नता बोर्डां अते केंद्र शासित प्रदेशां जैव विभिन्नता परिषदां दी 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग चंडीगढ़ विच शुरू हुई। पंजाब सरकार दे वल्लों जलंधर दे आदमपुर विच श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशाल कीर्तन दरबार सजाया गया। पंजाब विच वोटर सूचियां दी चल रही विशेष तीबर SIR 2026 तहत वक-वक जिलियां दे सारे वोटर वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लगाए गए। गुरदासपुर पुलिस ने 3 वक-वक मामलों विच 2 किलो हिरन समेत 3 नौजवानों नूं गिरफ्तार कीता। 7 प्रमुख ओपेक प्लस देशां ने अक्टूबर लई तेल उत्पादन नीति विच कोई बदलाव ना करन दा फैसला कीता। बैडमिंटन विच सात्विक साईराज रंकी रेड्डी अते चिराग शेट्टी दी भारतीय जोड़ी ने आज शेनजेन विच चाइना मास्टर विच मर्दा दे डबल दा खिताब जित लिया। सो ये सन न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट से इसी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जानकारी भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर।

नमस्कार आदाब ते सत श्री अकाल आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सोनी सवीर विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत करदे आं। सारयां नूं बहुत बहुत शुभकामनावां। मैं हां नीतू। कहिंदे ने कि हर सवेर अपने नाल एक नवी उम्मीद लै के आंदी है। बीते कल विच जो भी होया वह साडा तजर्बा बन गया, पर अज दा दिन वाकई साडे लई खास है। असीं चाहिए तां इस नूं शिकायतां दे नाल भर सकदे आं, चाहिए तो मुस्कुराहट, हौसले ते चंगीआं सोचां दे नाल इस नूं यादगार बना सकदे आं। इसलिए अज सवेरे अपने आप नाल इक छोटा जिहा वादा करिए, जो साडे वस विच है उस लई पूरी कोशिश करांगे, जो साडे वस विच नहीं है उस लई चिंता नहीं करांगे, ते जिहड़े लोग साडी जिंदगी विच प्यार लैके आउंदे ने उहनां दी कदर जरूर करांगे। सवेर दी पहली किरण दे वांग अपनी सोच नूं भी रोशन रखांगे। किसी दे चेहरे ते मुस्कुराहट लियाउण लई वड्डी दौलत दी लोड़ नहीं हुंदी। कई वार इक मिठा बोल, इक सच्ची दुआ या इक छोटी जिही मदद किसी दा पूरा दिन बना सकदी है। बिल्कुल जी, चेहरे ते मुस्कुराहट रखो, दिल विच उम्मीद रखो ते अज दे इस दिन नूं पूरे दिल दे नाल जीओ, क्योंकि जिंदगी बिल्कुल सवेर दी चाह वर्गी होंदी है। जिन्नी मर्जी गर्म जोशी दे नाल पियोगे ओना ही ज्यादा उस स्वाद देगी। ते हुण इस खूबसूरत दे नाल इस दिन दी शुरुआत करदे हां, क्योंकि वाकई ही एक खूबसूरत दिन तुहाडे वास्ते बहुत सारियां खुशियां खेड़े लेके आया। सो चाह दीआं चुस्कियां दे नाल मजा लो इस गीत दा।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: सो जी दोस्तों।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार

0: कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
6: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
7: देश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।

0: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331-0481, 0112371-7117 और 0112331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है, नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग।

0: जदू जदू भी बने रे भुलिका मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: ते लो जी दोस्तों, मनजीत ते जगजीत फिल्म दे विच तुसी गीत सुन रहे सी आशा भोंसले दी आवाज़ दे विच। सुनदे अगला गीत फिल्म नौटी जट से विचों गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ दे विच गाया होया।

लो जी, प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दे विच अगला गीत ते इस प्रोग्राम दा आखरी गीत तुहाड़े वास्ते लैके आ रहे हैं जैटन जूलियट फिल्म दे विचों अखियां।

हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम शास्त्री संगीत द प्रोग्राम सुर साधना। आज दे इस प्रोग्राम विच तुसी सुनिया चमन लाल भल्ला द्वारा राग देवगिरी बिलावल दे विच शास्त्री गायन। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। पेश है कुछ गजलां। सब तो पहला समाप्त फरमावांगे गुलाम अली दी आवाज़ विच गाई हुई एक गजल।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुड्ढे अते जवान सौ गल्ला दी एक गल सही
1: सिर्फ पैसे भेजन ले क्यू आर कोड स्कैन करी दा है जा पिन पाई दा है पैसे मिलन ले नहीं
2: आरबीआई कहंदा है क्यू आर कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
6: सो जी, ब्रेक तो बाद गजलां दी इस खूबसूरत महफिल दे विच एक होर प्यारा पड़ा लेके हाजिर हाँ मैं नीतू। सो तुसी सुन रहे हो कुछ गजलां, कुछ एहसास जो अपने दिल दे विचों निकलते ने, क्योंकि गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। कदे ऐसा एक शेर बीते पलां दी याद करवाउंदा है, तो कदे कोई धुन चुप चाप दिल दी गल कह जाती है। तो अगली गजल बिल्कुल जी एक इहो जिहा एहसास है। किहड़ा एहसास है, आओ सुनते हाँ असी भी ते तुसी भी।

सो ये सन न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असी आकाशवाणी दी जलंधर।

0: मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया, हाय मैं कातरू राम मुझे बुढ़ा मिल गया।
1: ते लो जी दोस्तों, साडे इस प्रोग्राम दे विच अगले दोस्त पहुंच चुके ने जी। नंबर मिला के साडा 01-81-281-3074 नू। एक होर दोस्त पहुंचे ने, विघ दिया जी कौन ने, स्वागत है जी बहुत बहुत।
2: मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
2: ਸੋਹਣਾ
1: ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੋ?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का लगभग 80% हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: ये निश्चित है कि बेसमेंट में पानी था और पानी भरने के कारण जो रिपेयर हो रही थी उसके कारण से पुरानी बिल्डिंग थी और वो ढह गई। अभी इसमें 12 लोग जो मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 जो है अभी ठीक स्थिति में है। उन सभी के पेरेंट्स जो है हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुखद घटना हुई है।
2: इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित

0: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटेल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटेल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69.38 अंक गिरकर 76,446 पर और निफ्टी 14.55 अंक गिरकर 23,883 पर कारोबार कर रहा था। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़। अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी लैके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वालों प्यार भरी नमस्कार।

भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तवा और दिवेंदु भूषण, संस्कृति ते पारुष वाइल्ड फील्ड बेंगलोर तो, झज्जर हरियाणा तो, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मियंक और इन्हों का सारा परिवार, पिंड कुणियाणा जिला फाजिलका तो, सरदार मलकीत सिंह कुणियाणा, मनजीत कौर बठिंडा, दपिंदर सिंह चेयरमैन, पोता गुरशबद सिंह, जीत सिंह कुणियाणा, दर्शन सिंह साबका सरपंच, सारा ही बराड़ परिवार, सुखदेव सिंह चहल बुरज हनुमानगढ़ तो, कुलवंत गिल मलोट तो। लो जी, अलग अलग जगह तो जिन्हें भी साथी संबंधी ने सारिया के नाम इन्होंने लिख के भेजे है। सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डाबवाली तो, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक ते विनोदपुरी अनारकली बाजार जगराओं तो, थोड़े सारिया की रली मिली पसंद ते। तुसी अपनी फरमाइश च सानू भेजा है जी आसा सिंह मस्ताना की आवाज़ च जुगनी सुननी है। लो फिर जुगनी सुना दिने, तुहाडे रेडियो सैट ते पहुँच रही है जी आसा सिंह मस्ताना की जुगनी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

और प्रोग्राम चगला सुनेहा, अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो, बदलापुर मुंबई तो, प्रणीता सिद्धांत लाडला टुक टुक गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो, वैशाली शैलेश सुमित कुमारी ध्वनि गवाणकर परी, और तुहाड़े सारयां दी रली मिली पसंद ते पेश कर रही हां सुरेंद्र कौर दी आवाज़ च गाया होया एक गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी और धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम च अगला सुनेहा पढ़न जा रही हूँ। कुड़ी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी ते बेबी बॉय हिमाक्ष। धमक जलंधर पैंदी का अगला सुनेहा विजय तंवर ते ममता मुंडी खरड़ तो। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती राणी राघव हरमन ते इन्हां दे सारे परिवार दे साथी मैंबर भी पूरे समय नाल इन्हां ने सुनेहा भेज दिता है। जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकिस्ट्रो रोजी पल ते विलिस जनकपुरी सहारनपुर तो इन्हां ने साडे तक सुनेहा भेजा है। संदीप मक्कड़ ज्योति मन्नत भरत मक्कड़ धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौंक गोराया तो इन्होंने साढ़े तक अपना सुनेहा भेजा है। प्रोग्राम च अगला फरमाइश जड़ी साढ़े स्रोत्या ने भेजी जयपाल यादव इंद्रपाल राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया रेणु और रोनिका यादव ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश तो गीत सुनना चाहते ने डॉली गुलेरिया की आवाज़ च और इसी गीत नाल होर नाम शामिल कर रहे हैं बंसी लाल संधु पोतरे कबीर और जसबीर पिंड तेजा मोड़ी अंबाला तो इन्होंने सानू मैसेज भेजा है। संधु पोतरिया और वरनीत और पवनीत कौर सारा ही संधु परिवार साढ़े तक हाजिर है जी अपने सुनेहिया दे नाल। और अगला सुनेहा प्रोग्राम च शामिल कीता नंद किशोर घटे संगीता साक्षी अंजलि बाला साहिब करवा जय श्री महेत्रे रामनिवास अग्रवाल धनंजय टबूल पी बी कुलथे इन्होंने सुनेहा भेजा जी बीड शहर महाराष्ट्र तो गोविंदपुर सीकर राजस्थान तो दातार सिंह शेखावत संगीता तुषार सिंह रिंकी शेखावत बठिंडा रोड मंडी डब वाली तो राजेंद्र नारंग अंजू मोहित लक्की तान्या गांव चगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़ गुरमेजो गौरव परवीन युगम वीरेन मनकीरत ते मनराज इन्होंने भी मैसेज भेजा है। बलाकी पत्ती पिंड मोड़ खुरद जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू रंजीत कौर जिमी फौजी तपूरा मल सोनू पिंकी विक्की कीरत और जगर पोरा इन्होंने भी अपना मैसेज सानू भेज दिता है जी। बलविंदर सरा गुंताश रसनदीप मनविंदर सरा पिंड मोरजट सिखा हनुमानगढ़ तो इन्होंने भी अपना मैसेज भेजा है। अगला संदेश ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिराही मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो पिंड चंदमारी तो साढ़े तक मैसेज आया है। मंगत राम जगदीश राणी संदीप मिड्डा ममता राणी अभिषेक मिड्डा ते दिव्या दा प्रोग्राम चगला सुनेहा नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो पी एस नहावकर निर्मला विशाल मलकापुर महाराष्ट्र तो नारायण इंगले सोपान आशीष मोहिरकर थोड़े सारे दी रली मिली पसंद है। प्रोग्राम दा आखिरी गीत आवाज़ डॉली गुलेरिया थी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759

0: पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने EFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम वस्ते फेड़े।

0: जी
1: मैं अज घर जायो अपने माता पिता नूं पुछे, उन्हां को पता नहीं किन्ने के की ते किवें ते क्यों होने हैं, जिन्हां दा जवाब अज तक नहीं लभ सके क्योंकि स्कूलों तक पहुंचे नहीं।
0: जी
1: सो नैक्सट डे मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा हाँ जी किसी ने पूछा सी, तो सब दे हाथ खड़े हो गए। किसी ने जे मान लो किसी का पिता वैन चला तो उसका क्वेश्चन ये आया सीगा कि मैंने पूछते हैं लोग कि वैना पीले रंग दिया ही क्यों ने,
0: जी
1: जे कोई पेट्रोल पंप ते काम करता है तो पाइप जी पेट्रोल वाली जी जो पाने वो ब्लैक कलर की ही क्यों है, मतलब इस तरह की क्वेश्चनिंग। गृहणियों के माताओं के क्वेश्चन आए कि रोटी क्यों फुल दी है तवे ते पाया हो, तो मेरे दिमाग में आया कि क्वेश्चन तो वाकई आंसर मंगते हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चन ने। तो मैं किया कि मैं क्या बेटा एक एक करके सवेर की सभा दे विच आपां डिस्कस करिया करांगे। तो मैं
0: ठीक है।
1: सवेर की सभा में चढ़ जाना स्टेज पर, हर किसी ही आर्टिकल नूं जो भी उन्होंने है डिस्कस करना। उस तो बाद मैं अजीत अखबार के लिए लिखना शुरू कर दिता और आर्टिकल मेरे अज तक छप रहे बाल संसार दे विच।
0: जी
1: और फाइनली मैं कहा कि ये तो इन्हों तो मैं दस दिता, हूँ भविख च जे आने उन्होंने क्वेश्चन जो ना किए वाले नवे किए तो आप की करांगे।
0: जी
1: तो इस मैं एक बुक की शक्ल देती, लाइब्रेरी च रखवाती हूँ बुक्स, मैं क्या लाइब्रेरी च लो पढ़ो, जाके खुद भी पढ़ो तो अपने माँ बाप में भी पढ़ाओ, ताकि उन्होंने जो शंके है जो उन्होंने मन च है भी चूहा चीजा क्यों कुतरदा है या फलाने यहो जो क्वेश्चन है ये भी जाके समझ लैन। सो इस तरीके ने बुक जी होंद चाहिए।
0: बहुत वधिया गल है कि जो एक उत्सुकता है वो विद्यार्थी दे विच जरूर होनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए है, विज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए है,
1: बिल्कुल
0: जिस नाल कि वो चीज़ां नू जान सके, समझ सके
1: जी जी
0: ते होर बेहतर जीवन जीव सके, समाज दे विच बेहतर भूमिका निभा सके।
1: जी
0: ते तुसी गल कीती है कि तुसी इस नू किताब दी शक्ल दित्ती ते हमेशा दे लई उस नू लाइब्रेरी दे विच रखवाया।
1: जी
0: अजकल बच्चों का किताबां प्रति रुझान घटता जा रहा है ते अपने सिलेबस तो अलावा वो कुछ पढ़न तो गुरेज करते हैं, ते तुसी क्योंकि लाइब्रेरी दे विच भी योगदान दे रहे हो ते बच्चों नू पढ़न वल किस तरह मोड़ना चाहिए है बच्चों नू?
1: ज़्यादा तो बच्चे मेरे को साइंस वाले ही आते हैं, तो साइंस के पहले ही तुम्हें पता कि बहुत वर्कलोड हों, बहुत सिलेबस होंगे है, पर फिर भी मैं उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित करता रहना कि लाइब्रेरी बुक्स लो और उन्होंने पढ़ो। ये मैं फिर की किया कि दो स्कीम चलाइया स्कूल के, एक तो चलाई है मैं किताब पढ़ी जी,
0: जी
1: सवेर की सभा में बच्चे ने बोलनी होंगी है, जो एक किताब पढ़ लेंदा उन्हें फिनिश की कि नहीं प्रॉपर पढ़ी कि नहीं, वो मैं ही रखा हुआ है कि मैं एक किताब पढ़ी, वो दसता है कि किताब की सी, किहड़े करैक्टर सी, की इहदा रिजल्ट सीगा, वो सानू दसता है। दूजा मैं शुरू किया प्रोत्साहन सर्टिफिकेट,
0: जी
1: उस बच्चे को दिता जाता जिन्हें महीने में सब तो वध किताबां पढ़ियां, अते मैं किताब पढ़ी जिहड़ी लड़ी है स्टेज ते उहदे बारे दस्या भी, सो उसनों ही प्रोत्साहन सर्टिफिकेट देना शुरू किया। छोटे छोटे इनाम जिवें डिक्शनरी देती या कुछ देता, इहो जिहे कंपीटीशन असीं करवाउंदे रहिंदे तां कि लाइब्रेरी दे प्रति बच्चों का जिहड़ा आकर्षण है वधे, लाइब्रेरी सेवावां नूं होर बेहतर किया तां कि बच्चे जिहड़े उत्थों तक पहुँच उन्हां दी जिहड़ी उह सुखाली हो सके। जी
0: तुसी सरताज सिंह जी कहा कि मैं ये काम शुरू किया, मैं ये सभा दे विच बच्चों तो बुलवाना शुरू किया। असी ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो भी असी गल करते हाँ कि किसी संस्था दे विच कोई काम हो रहा है तो अक्सर टीचर्स ये शिकायत करते हैं कि संस्था वालों सहयोग नहीं मिल रहा या फिर सानू उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, ये संस्था ने ही शुरू करना है, प्रिंसिपल की ही जिम्मेदारी है, पर तुसी क्योंकि खुद पहल करके ये काम शुरू किए ने, एक टीचर नू व्यक्तिगत तौर पर खुद पहल करने के लिए किवें अगे आना चाहिए तो की सोच होनी चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है।
1: देखो मैम साढ़े को जिहड़े बच्चे आए हैं करना तो सब कुछ बच्चों लिए है, ठीक है ना, सैलरी तो सानू मिलनी हो सानू अपने कामों की मिलनी मिलनी है, साढ़े च एक सोच होनी चाहिए, एक चिंगारी होनी चाहिए है कि असी इस बच्चे नू किसे पदवी तक पहुँचाना है, किसी खेत्र के अगे लैके जाना, तो वो सानू किसी न किसी तो अगे आना ही पएगा, किसी न किसी तो अगे होकर देखो कोई भी शुरुआत जी करनी पएगी, इसलिए टीचर दे विच खुद जे स्पार्क होगा तो फिर ही यहो जिहड़े काम हो सकते हैं जी।
0: यानी कि असी जो सानू मेहनताना मिल रहा है सरकार वालों या किसी भी संस्था वालों उसनू जस्टिफाई पूरी तरह तो असी सब करते ही हाँ, पर इस तो अलावा जे कुछ समाज दे विच एक्सट्रा ऑर्डनरी असी देखना चाहते हैं तो उस लिए कुछ एक्सट्रा भी करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल मैम बिल्कुल
0: जी। तो देखो अज के युग दे विच अध्यापक की भूमिका की असी गल कर रहे हैं कि कहड़े कहड़े खेत्रां दे विच किवें विशेष भूमिका होनी चाहिए है, इस तो अलावा तुहानू की लगता है कि होर किहड़े खेत्रां दे विच अध्यापक चंगी भूमिका निभा सकदा है या किहड़ियां नीतियां बदलण दी अज सिक्ख्या दे खेत्र दे विच लोड़ है?
1: देखो एक बतौर टीचर जे मैं गल करा तो नीतियां तो सरकार ने बनाउणियां आ, आपां सिर्फ सजेशन्स ही दे सकते हैं कि इस तरह की नीति हो जानी चाहिए है, लेकिन मेरे ख्याल दे विच एक टीचर जिहड़ा वा खुद जो हालात ने उन्हां च अपने आप नूं जिहड़ा उन्हूं एडजस्ट कर लेना चाहिए हैगा है, जेकर जिन्ने के सोर्सिज मौजूद आ उन्हां सोर्सिज दे विच ही सानूं खुश रहना चाहिए, मेरा मनना यह है। जदों प्रोजैक्टर नहीं सी उदों भी असीं पढ़ाउंदे सी, जदों अज कल आ गए प्रोजैक्टर तां वी आपां पढ़ा रहे हैं,
0: जदों घट सहूलतां सी
1: हाँ घट सहूलतां सी उदों भी असीं पढ़ाउंदे सीगे ते हुण ज़्यादा सहूलतां ने ते हुण भी असीं पढ़ा रहे हैं, सो मेरे ख्याल दे विच जो जिस तरह चल रहा है उस दे विच ही आपां नूं एडजस्ट करना पएगा।

0: हुणे तुसी सुन रहे सी परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। दोपहर का 1 बज रहा है। लो हुण हिंदी च समाचार सुनो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महा

काल के सात अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होने जा रहे ने, कुछ ही पलां च तुसीं सुणोगे प्रादेशिक खबरां।

0: ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬੈਟਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। साउथ जोन एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर 4 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम ज़ेवियर बैटल के साथ बाहमी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी के सिलसिले में फिक्रमंद है, भारत और लग्जमबर्ग के पुरएतमाद रिश्ते हैं। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह गोवा में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। आईएमडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट से वाबस्ता एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में जनाब मोदी 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, उन्हें वक्फ करेंगे और उनका संग बुनियाद रखेंगे। वो 326 किलोमीटर का अहाता करने वाले और 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत से तैयार मगरबी मालबरदार कॉरिडोर के 3 हिस्सों को भी वक्फ करेंगे। वजीर आजम वडोदरा और टांडा सड़क के दरमियान एक नई रेलगाड़ी और 4 मकामात पर माल बरदार ट्रेन खिदमात को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जोबार टांडा नई रेल लाइन को भी वक्फ करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज और कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से मरबूत करेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में जनाब मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने सलामती के इकदामात और जारी बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत के मकाम का आज एक मरतबा फिर दौरा किया। नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहाइयों पुरानी कसीर मंजिला इमारत के मकाम से तकरीबन 80% मलबा हटा लिया गया है। वज़ीर-ए-आला ने मुत्तला किया कि 12 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 7 की मौत हो गई है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने कल भी जायहादसा का दौरा किया था और कहा था कि हुकूमत मुतासरा तलबा के वालदेन से राब्ते में है।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: वज़ीर-ए-आला ने कहा कि यह अलमनाक हादसा इमारत के मालिक की गफलत की वजह से पेश आया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला ने मजीद कहा कि इलाके में ऐसी खतरनाक इमारतों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें मुनहदिम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन ओहदेदारान को जिनकी कोताही की वजह से यह हादसा पेश आया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज जायहादसा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत से मुतालिक कौमी फोर्स एनडीआरएफ की टीम कार्रवाई में मुसलसल मसरूफ है। जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आला ने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वे इस मामले के जिम्मेदार सभी अफराद को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला के दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारतों को फौरी तौर पर सील किए जाने की हिदायत दी गई हैं। सीएमओ ने मजीद कहा है कि वज़ीर-ए-आला ने वाजे कर दिया है कि दिल्ली के बाशिंदों की सलामती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गफलत के मामलात में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक इमारत के गिरने के वाके के बाद जारी बचाव और राहती कार्रवाइयों के पेश नजर आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक मुतासिर रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-खारजा डॉक्टर एस जयशंकर

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत मोहरा फिल्म चो लिया गया। आवाजा दितिया ने पंकज उदास और साधना सरगम ने। इस गीत दे गीतकार ने इंदिवर।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4

0: इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता

0: ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
3: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रही।

0: रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने दो मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के छह जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
2: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 टूरंट कम के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालिंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मेरी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। सारे स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते ने। ते नाल दे नाल न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे नाल जुड़ सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने मास्टर सलीम। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज च सब तो पहला तेरे इश्क नचाया कर थई।

साफ हवा रखो तो उसके विच खुद भी सह लो तो होरनू नूं भी तुसीं साफ हवा दे विच सह लैण दिओ। तो इहदे लई की करो जी, तुसीं की करो, पैदल चलो तो साइकल चलाओ। आखिर क्यों उह असीं दस्सांगे। तो साइकल तुसीं हुणे कढ लो बाहर, जे तुसीं कितें सांभ के रखे वखरा जिहा करके रखे कि साइकल ते जावांगे तो साडी बेइज्जती हो जाणी, इंसल्ट हो जाणी आ। असीं तां गड्डी च जाणा आ, असीं तां बाइक ते जाणा, असीं एक्टिवा ते चले जावांगे, पर साइकल ते बिल्कुल नहीं पसंद करदे। तो जे तुसीं नहीं करदे पसंद तां अज तो ही अपनी पसंद नूं तुसीं बदल दिओ, क्योंकि साइकल ते तुसीं जांदे हो जां तुसीं पैदल जांदे हो तो इहदे नाल की हुंदा आ कि तुहाडी सेहत बिल्कुल फिट एंड फाइन रहिंदी आ, तुसीं सेहतमंद रहिंदे हो। तो नालों नाल हवा दे विच भी प्रदूषण घटदे, क्योंकि जो तुसीं वाहनां ते जांदे हो तो प्रदूषण फैलांदे आ, वाहनां दे विचों जिहड़ा धुआं निकलदा आ। तो एक गल होर असी अपने स्रोतियों के सांझी करांगे कि कई बार की करते हैं, असी अपने जिहड़े वाहन हुंदे आ उहनां दी असी केयर नहीं करते तो पोल्यूशन वो भी बहुत ज़्यादा कर देंगे। इस करके उन्होंने असी मेनटेन करके रखिए, उन्होंने सांभ संभाल रखिए, समय समय से असी उन्होंने सर्विस करवाते रहिए, जिहड़ी हवा आ वो साफ बनी रहे। तो श्री गंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा लिख रहे हैं। डब वाली हरियाणा तो जेके बकालिया, श्रीमती सुनीता बकालिया, संजय अनिल, मीनू बकालिया, चंडीगढ़ तो सतीश, बिमला अनेजा, गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर, सहजप्रीत सिंह पिंड गोरी, जिला मोहाली तो। जिला है फाजिलका, पिंड है बाजीतपुर, भोमा इन्हों का नाम है। तो कहते बलजीत सिंह भी मेरे नाल ने, वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह भी इस चिट्ठी के शामिल ने। फरमाइश सारे की खूबसूरत आवाज है परी पंधेर की।

कुछ रिश्तों को नामों की जरूरत नहीं होती, वे बस दिल की धड़कनों में अपनी जगह बना लेते हैं। जब कोई इंसान आपकी हर खुशी की वजह बन जाए तो समझ लीजिए वही आपकी पूरी दुनिया है। इसी खूबसूरत एहसास को समर्पित प्रोग्राम में अगला गीत साथी फिल्म दा, आवाजा मुकेश ते लता मंगेशकर दियां। इस गीत नू लिखिया मजरू सुल्तानपुरी ने ते संगीत निर्देशक ने नौशाद।

ढलती हुई शाम का भी अपना एक अलग ही जादू होता है। कुछ रंग आसमान में बिखरते हैं, कुछ यादें दिल में उतर जाती हैं। बस फिर वही शाम खूबसूरत बन जाती है जो किसी अपने की यादों के साथ गुजर जाए। सदाबहार गीत तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। प्रोग्राम च अगला गीत तुसी सुनोगे कटी पतंग फिल्म चो लिया गया। आवाज़ किशोर कुमार दी, गीतकार ने आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव वर्मन।

कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें दिल हमेशा के लिए रोक लेना चाहता है। जब किसी अपने का साथ इतना खूबसूरत लगे तो वक्त के गुजर जाने का डर सताने लगता है। बस दिल यही कहता है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सदाबहार गीत द आखिरी नगमा, हम दोनों फिल्म चले आ गया। आवाज़ आशा भोसले ते मोहम्मद रफी दी, गीतकार ने साहिर लुधियानवी और संगीतकार ने जयदेव।

अकाल पुरख प्रभु सारी सृष्टि दा करता तरता है, कुल कायनात उस असीम प्रभु दी आराधना करती है। हाँ, अपने विचार अनुसार विधियां वखो वखरियां हो सकदियां ने, पर सबना दा इष्ट अकाल पुरख है। उस प्रभु दा परापूर्बला नाम सतनाम है। उंज तो उसके अनेक गुणा करके नाम भी अणगिणत हैं। प्रभु दा नाम मनुखता दा आधार है। नाम कल्याणकारी ते सर्वहितकारी है। ये नाम हर प्रकार नाल सहाई है। साध संगत विच जाके जपियां सारे कारज संपूर्ण हुंदे हन। इस नाम नू बहुत सारे दृष्टांत दे के वड्याया गया है। नाम डुबदे लई बेड़ी है, बुझ रहे दीवे वास्ते तेल है, अग्नि नू शांत करन वाला जल, भुख नाल विलकदे बालक लई दुध है, रण खेत्र विच नाम नाल खड़े होण वाला भरा है, भुखे लई आहार, किरसानी लई मेघ है, शेर वांग निडर है, रख्या है नाम। नाम दी उपमा तो बहुत है, प्रभु आप ही उपमा जानदे हो। पवित्र करन वाला नाम सिमर के पवजल तरिया जा सकदा है। राग तिलंग विच उचारे शब्द विच भगत नामदेव जी

0: अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। इस शब्द दा गायन कीता सी प्रोफेसर दर्शन सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। इस लोक विच संसारी जीव रोगी हन, रोग रहत सिर्फ अते सिर्फ सच्चा गुरु है। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। असल विच संसारी जीव जो प्रभु दे निकटवर्ती नहीं, वह विकारां दी मैल कारण अपवित्र हन। क्योंकि संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना। पर जे जीव सदा प्रभु दा नाम जपे तो फिर कोई रोग नेड़े नहीं आउंदा। क्योंकि नाम के तारे सगले जंत, नाम सारे रोगां दा निवारण करदा है। ते ए नाम रूपी औखद देण वाला प्रभु दयालु है। बस लोड़ है उस प्रभु अते उस दे सच्चे नाम दी बरकत वड्याई नूं जानन दी। तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नाम दी महिमा बयान करदे ने। औखद तेरो नाम दयाल, ये वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर अमरजीत सिंह।
1: सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे इस पावन शब्द दी पहली ही पंक्ति साडे सामने जीवन दा एक बहुत डूंघा सच रख दिंदी है। औखद तेरो नाम दयाल, भाव हे दयाल प्रभु तेरा नाम ही मेरी दवाई है। मनुख जदों बीमार हुंदा है तां दवाई लभदा है, शरीर विच दर्द होवे तां डाक्टर कोल जांदा है, मन विच बेचैनी होवे तां किसे नाल गल करदा है, अते जदों जीवन विच कोई वड्डी मुश्किल आ जावे तां किसे आसरे दी भाल करदा है। पर गुरु साहब सानू एक अजिही औखदी वल इशारा करदे हन जो मनुख दे सब तो डूंघे रोग दा इलाज करदी है, वह औखदी है प्रभु दा नाम। इत्थे एक गल बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है, गुरबाणी जदों नाम नू औखद आखदी है तो इस दा अर्थ ये नहीं कि शरीरक बीमारी विच डाक्टरी इलाज या दवाई की लोड़ नहीं। शरीर की बीमारी

हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द गायन कीता सी भाई रविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

हुण तुसी सरवन कर रहे सी साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स फाजिलका, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स कसौली ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6 वजन वाले ने। हुण तों कुछ ही पलां दे इंतजार तों बाद तुसी सुनोगे हिंदी समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों। तुसी साडे आकाशवाणी जलंधर दे सारे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा, राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी

0: किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे हां अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 दिहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिस विच होणगियां कम दियां गल्लां। सर्द रुत्तां दियां खुंबां बारे जानकारी देंगे डॉक्टर शिवानी शर्मा। सब्जियां दे कीड़ियां दी रोकथाम इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर परमजीत कौर। कल दे प्रोग्राम दे मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तो अलावा थोड़े मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते विविधा प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे हिंदी व्यंग वार्ता महाकवि होने की कगार पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दलजीत कौर। रात 8:00 प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 तुसी सुनोगे पंजाबी नाटक ए वी इतिहास है लेखिका अजीत कौर। रात 10:02 ते प्रोग्राम पेश किया जाएगा कवि गोष्ठी। आज दी इस कवि गोष्ठी दे विच भाग लैण वाले कवि ने राजवंती मान, महेश कुमार, वरिंदर कुमार ते विनोद गोयल। रात 10:30 तुसी आनंद माणोगे गजलां दा। सो ऐसी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। इस तो अलावा हिंदी, पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं? अच्छा, तुहानु फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कितने हैं तीदा नवा खाता ते मेरी KYC अपडेट।
3: ये तो चटपट वाला काम है।
2: किवें
3: जे KYC दे वेरवे विच बदलाव ने जा सिर्फ पता बदलया है ता रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल ऑनलाइन जा चिट्ठी राही सेल्फ डिक्लेरेशन दे दियो
2: अते बाकी बदलाव
3: घर बैठे वीडियो KYC आधार OTP ते आधार आत eKYC नाल सिर्फ बैंक दे अधिकृत चैनलां रही।
2: ये ता नूडल बनान जिन्ना सोखा है। RBI कहंदा है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग वल पहला कदम।
5: नमस्कार ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्र दी मार्च 2027 तक 300 कृषि विज्ञान केंद्रां दे बुनियादी ढांचे अते लॉजिस्टिक्स नूं अपग्रेड करन दी योजना। पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दे 11 KV दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नूं जमींदोज केबल सिस्टम विच बदलन दे प्रोजेक्ट दा उद्घाटन कीता। अमृतसर देहाती पुलिस ने सरहद पारों नशीले पदार्थों ते नजायज हथियारों की तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करदिया दो व्यक्तियों नूं 15 पिस्तौलों ते 5 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलजार सिंह संधवा ने सूबे के नौजवानों का सर्वपक्षी विकास यकीनी बनाने लिए उन्होंने खेडों में सरगर्मी नाल हिस्सा लेने की अपील की थी। भारत की शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीजे पड़ाव औरतों के कंपाउंड व्यक्तिगत मुकाबले के फाइनल में पहुंच के भारत के तमगा पक्का किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी की थी। मीटिंग विच राज्यां दी हिस्सेदारी वधा के कृषि विज्ञान केंद्रां KVK नूं मजबूत करन दी कार्य योजना दी समीक्षा की गई। मीटिंग मुख तौर ते मार्च 2027 तक 300 तरजीही कृषि विज्ञान केंद्रां KVK दे बुनियादी ढांचे नूं आधुनिक बनाउण ते केंद्रित सी। श्री चौहान ने जोर दे के कहा कि निर्धारित समा सीमा दे अंदर टीचे नूं प्राप्त करन लई राज सरकारां तो सरगर्म हिस्सेदारी समय सिर सहायता जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रां दी मुड़ सुरजीती लई केंद्र अते राजां विचकार बेहतर तालमेल समय सिर माली सहायता आधुनिक बुनियादी ढांचा लोड़ींदी मनुखी शक्ति अते जिला पदरी कारज योजनावां नूं प्रभावशाली ढंग नाल लागू करन दी लोड़ है। दिसंबर 2028 तक सारे कृषि विज्ञान केंद्रां विच इनक्यूबेशन ते हुनर केंद्रां दी स्थापना ते वी चर्चा कीती गई। चंडीगढ़ दी बिजली वंड प्रणाली नूं आधुनिक बनाउण अते बिजली सप्लाई दी भरोसेयोगता वधाउण दी दिशा विच इक अहम कदम उठाउंदे होए चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड CPDL ने सैक्टर 1 तों 8 तक 11 KV दे ओवरहेड बिजली वंड नैटवर्क नूं सफलता नाल जमींदोज केबल सिस्टम विच बदल दित्ता है। करीब 25,000 तों वध निवासियां नूं लाभ पहुंचाउण वाले 12 करोड़ रुपए दे इस प्रोजेक्ट दा उद्घाटन अज पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने कीता। इस मौके ते सीनियर भाजपा नेता श्री संजय टंडन भी मौजूद सन। ए प्रोजेक्ट चंडीगढ़ दे सब तो महत्वपूर्ण अते संवेदनशील खेतरां विच बिजली दे बुनियादी ढांचे दी व्यापक अपग्रेडेशन दा प्रतीक है। इन्हां इलाकियां विच पंजाब अते हरियाणा सिविल सकत्तरेत पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट रॉक गार्डन अते सुखना झील सहित कई प्रमुख सरकारी संस्थावां सैर सपाटा स्थान अते रिहायशी खेतर शामिल ने। इस मौके श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिथे बिजली वंड व्यवस्था प्राइवेट खेतर नूं सौंपी गई है। CPDL नूं इह जिम्मेवारी बिजली सप्लाई के बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन अते बिजली वंड व्यवस्था भी सुधार करन की उम्मीद नाल दित्ती गई सी। ओवरहेड बिजली

0: पटवारी साहब लंघ आइए जी।
1: आजू आजू आजू बल साहब बच्चे वाले ओ आजू की
0: पटवारी
1: हाल।
0: पटवारी साहब जय हिंद
1: जय
0: जी।
1: हिंद जी जय हिंद जी। होर सुनाओ की हाल चाल तुहाडा।
0: हाल चाल तो ठीक ठाक है पटवारी साहब। अज मैं उम्मीद ला के आया से भी पटवारी साहब अज मिल पैणगे ते देखो देखो तुसी मिली पे।
1: वैसे आपां कहिंदे ना जिदा उम्मीद रखो
0: जी
1: उम्मीदां नाल ही दुनिया है
0: जी आसा
1: हाँ
0: नु
1: जी।
0: मुरादन।
1: ते जे तुसी आस रखी सी ते तुहाडी मुराद भी पूरी होगी।
0: बिल्कुल जी
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: जी।
0: हाँ जी
1: ते वैसे ना ये जड़ी आस है ये
0: जी
1: हमेशा इंसान नू रखनी चाहिए है
0: बिल्कुल जी
1: अपनी जिंदगी दे विच।
0: जी
1: जिवें आपां कहिंदे आ ना कि हनेरे तों हनेरे समें विच रोशनी दिखाउंदा है
0: हाँ जी
1: जे तुसी कोई उम्मीद करदे हो।
0: जी
1: ते उम्मीद है ते फिर दुनिया कायम
0: बिल्कुल जी
1: है जी। ते जेकर तुसी इसे तरह उम्मीदा रखते हो
0: हाँ जी
1: ते सकारात्मक सोच रखते हो
0: जी
1: एक विश्वास दे नाल मुश्किल समय दे विच भी
0: हाँ जी
1: हमेशा दे लई ये जड़ी उम्मीद है ये एक उम्मीद जगा के रखती है। जो तुसी किसी गल ते उम्मीद करते हो
0: हाँ जी
1: कि अज तुहानू कोई मिलेगा है
0: बिल्कुल जी।
1: जी वो आस पूरी हुंदी हुंदी है।
0: देखो जी पूरी ना भी होवे पटवारी साहब दो गल्लां ने। जे उम्मीद आपां रखी आ पहली गल तां उम्मीद होवेगी बंदे दे अंदर फिर ही बंदा तुरेगा। जे वो काम पूरा ना भी होया उहदा दिल टुटेगा वह दुबारा फिर संभलेगा फिर उठेगा फिर उधर नूं तुरेगा। सो इस करके उम्मीद रखनी तां बहुत ही ज़्यादा जरूरी है
1: वैसे ना जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां मुश्किलां हैं
0: जी।
1: ते जिहड़ियां आपां जित्तां भी देखियां
0: हाँ जी
1: वह भी उम्मीदां दे नाल ही है।
0: बिल्कुल जी उहदे सिर ते
1: जे असीं उम्मीद छड्ड दईए कि यार ये साडे कोलों कम्म नहीं जो होना
0: हाँ जी
1: या ये हिम्मत हार जाइए
0: जी
1: तो फिर वो कम्म जड़ा है वो सिरे नहीं
0: फिर
1: चढ़ता।
0: तो सिरे बिल्कुल नहीं चढ़ता जी।
1: तो इस करके सानू हमेशा जिवें तुसी अज उम्मीद रखी सी कि आपां अज मिलना है
0: जी
1: ते देखो फिर तुहाडी उम्मीद भी पूरी हो गई
0: हाँ जी
1: है जी। एक सोच है
0: जी
1: एक जदों आपां देखते हैं ना कि एक पॉजिटिव अप्रोच जिन्हों आपां तुसी अंग्रेजी तुसी तो ज़्यादा जानते होने हैं मेरे
0: हाँ जी हाँ
1: नालों।
0: जी
1: ते एक आपां जदों सकारात्मक सोच रखते हैं
0: जी
1: वो सकारात्मक सोच दे नाल ना हमेशा इंसान जड़ा है जिहड़ा तनाव अजकल पैदा हुंदा ना
0: जी
1: स्ट्रेस जिहनूं आपां कहिंदे आ
0: जी
1: वो भी घटदा है।
0: देखो पटवारी साहब जदों आपां कोई काम करन वास्ते तुरदे हां ना मुश्किलां तां उहदे विच आउणियां ने
1: आउणियां
0: पर
1: ही
0: जे
1: है
0: आपां आस ते उम्मीद लै के तुरदे हां ते जिहड़ियां उह मुश्किलां ने उहनां तों ध्यान आपणा हट के ते आपणी सारी जिहड़ी शक्ति आ ना उह जिस कारज वल आपां तुरे होए हां उधर लगदी है।
1: देखो ना गुरु साहिबाना ने भी सानूं कदे भी निराश ना होण दे लई हमेशा चढ़ती कला च रहण दा संदेश दिंदा
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: उह तां कहिंदे ने ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे
0: सरबत
1: सरबत दा
0: दा भला
1: भला।
0: जी
1: जिवें कि हमेशा उत्साह ते आस विच रहना चाहिए
0: हाँ जी
1: है जी। यही सानू जड़ा है उस जिंदगी च जिन्नियां मर्जी रुकावटां आउण अपने अंदर दी उम्मीद जिहड़ी दीवे नू कहिंदे ना जदे कदे भी बुझण नहीं देना चाहिए
0: जी बिल्कुल
1: ते हमेशा इंसान नू उम्मीद लगा के रखनी चाहिए है।
0: सही गल
1: ते
0: है
1: जे
0: जी
1: तुसी उम्मीद रखोगे
0: हाँ जी
1: ते तुहाडी फिर जिहड़ी सोच

300 ml है, ओमाइट है 50 EC, मात्रा यदि 300 ml है, यही तुसी 100 लीटर पानी दे विच घोल के इहदा छिड़काव करना है। इसी तरह भिंडी दे विच जेकर कीटनाशक तो बिना नहीं कंट्रोल हो रहा, नहीं रोकथाम हो रही, तो 150 ml ओबेरॉन 22.9 SC लैके इनू 100 लीटर पानी दे विच घोल के इहदी स्प्रे या छिड़काव करना है। इसी तरह शिमला मिर्च दे विच भी जेकर कंट्रोल नहीं मिल रहा, जेकर रोकथाम नहीं मिल रही, तो आप कीटनाशक वल जाना है, उहदे विच 100 ml ओबेरॉन पाना है या 200 ml ओमाइट 50 EC इनू 100 लीटर पानी दे विच पा के इहदा आप छिड़काव करना है। किसान वीरों मैं फिर दस रही हाँ, या ओबेरॉन या फिर ओमाइट इन्हां नू तुसीं घोल के मिक्स करके नहीं करना, ये दोनों अलग अलग दवाइया ने, इस करके इन्हों का तुसी अलग अलग ही स्प्रे करना है। जिदा कि पहला तुसी ओबेरॉन कर दो 100 ml, जे जरूरत होवे ता 8-10 दिन बाद ओमाइट दी स्प्रे कर सकते हाँ। किसान वीरों इस तो इलावा अपने मकौड़िया बारे थानू मैं जिहड़ी जानकारी दित्ती है, इस तो इलावा होर बहुत सारे कीड़े ने जिहड़ी कि साडी सब्जी दी काशत दे उपर हमला करदे हन ते सानू मुश्किलां आ रहियां हन। इह जिहड़े कीड़े ने जिद्दां कि कद्दू जाती है, कद्दू जाती दे उपर बहुत सारे कीड़े आंदे ने, कद्दू जाती दी फसलां ते जिद्दां कि लाल भुंडी है, चेपा है, चिट्टी मक्खी है या फल दी मक्खी है, सो सानू इन्हां दे हमले दा सामना करना पैंदा है। कद्दू जाती दी फसल ते जिवें कि लाल भुंडी है, इन्हें पत्तियां नू खा जाना हुंदा है, सो इस दी रोकथाम भी असीं बिना कीटनाशक तो कर सकते हाँ। इसलिए बूटियां दे पत्तियां उपर गोहे दी सवा दा 3-4 बार हफ्ते दे बकवे ते सानू छिड़काव कर देना चाहिदा है। इस दे नाल असी लाल भुंडी दी जिहड़ी रोकथाम है वह कर सकते हाँ। इसी तरह जिहड़ा चेपा है, इहदा भी नुकसान बहुत हुंदा है, पर इहदे विच इह है कि नदीना नू खत्म कर दिओ, क्योंकि जिहड़े नदीन हुंदे आ साडे खेत दे विच इहनां कीड़े मकौड़ियां दा घर हुंदे ने, ते सानू इह नदीन इहनां दा जिहड़ा घर हुंदा आ सानू इह तोड़ना ही पऊगा। इस करके जिहड़े नदीन ने उहनां नू तुसीं कढ दिओ अपने खेत चों, तां कि इह कीड़े उहनां ते जा के अपने आंडे ना दे सकन। इक गल होर है किसान वीरों, जिहड़े कि खादां सिफारिश कीतियां होईयां ने उन्हां दी मात्रा उन्नी ही वरतनी चाहीदी है, जिदा कि नाइट्रोजन वाली खाद है, जे असी ज़्यादा वरतदे हाँ इहदे नाल की हुंदा है, पत्ते दा वाधा ज़्यादा हो जाता है, जिहड़ी हरे रंग दा पत्ता है इह कीड़ियां नूं अपने वल नूं खिंचदा है, पत्ता वड्डा होण करके इक रंग हरा होण करके इहदे नाल की हुंदा है, जिहड़े कीड़े ने इहदे वल नूं ज़्यादा आंदे हन ते हमला भी ज़्यादा हुंदा है। इस करके जिन्नियां भी खादां ने उन्हां दी सिफारिश जिहड़ी भी खाद दी कीती है, जिस मात्रा ते कीती है, उस दे हिसाब दे नाल ही किसान वीरों इन्हां नूं वरतो। चिट्टी मक्खी, चिट्टी मक्खी एक रस चूसन वाला कीड़ा है, ते इहदे रोकथाम लई 1200 ml PAU निम दा घोल 100-125 लीटर पानी दे विच घोल के तुसी छिड़काव कर सकते हो। PAU निम दा घोल किस तरह बनाना है किसान वीरों, मैं थानू पहला ही दस चुकी हाँ। फल दी मक्खी, फल दी मक्खी भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, सो इहदे लई तुसी एक घोल तैयार करो, उस घोल दे विच मैलाथियोन अते गुड़ या खंड भी तुसी वरत सकते हो, इहनू तुसी 20 लीटर पानी दे विच घोलना है। मैलाथियोन लैनी है 20 ml, ते 200 ग्राम लैना है गुड़, ये दो चीज़ां लैके इहनू 20 लीटर पानी दे विच तुसी घोल दिओ। फिर इसका छिड़काव आपां बूटियां ते करना है, किहड़े बूटियां ते करना है, मक्की दे बूटियां ते। हुण तुसी किसान वीरो कहोगे कि मक्की दे बूटियां ते क्यों, क्योंकि मक्की दे बूटे जिहड़े ने इह चिट्टी मक्खी लई आराम करन दा इक घर है, क्योंकि इह चिट्टी मक्खी आराम करदी है जाके मक्की दे बूटियां दे उपर, ते इह जे 8-10 मीटर दी विथ लाइना च लगे हुए ने, तां तुसी इन्हां दा छिड़काव मक्की दे बूटियां दे उपर ही करना है। ते इस तो इलावा तुसी फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो कि यूनिवर्सिटी दे विच मिलदे हन

150 मिली लीटर मक्की, चरी या बाजरे का जिहड़ा रस है ओह 100 तो 125 लीटर पानी दे विच घोल के उहदा छिड़का कर दो। या फिर जेकर ज़्यादा ही लोड़ पैंदी है तां इक कीटनाशक है पैगासस 50 WP, ये 200 ग्राम लै के 100 तो 125 लीटर पानी दे विच घोल के यदि स्प्रे कर दो। किसान वीरो, हुण मैं तुहानू भिंडी दे कीड़ियां बारे कुछ दसूंगी ते उहनां दी रोकथाम किवें करनी है ओह वी तुहानू मैं दसांगी। भिंडी दे विच जैसिड, जिवें कि तेला जिहनूं आपां कहिंदे हां, चिट्टी मक्खी है, चितकबरी सुंडी है, इहदा जिहड़ा हमला है बहुत ज़्यादा हुंदा है। जैसिड तेला जिहड़ा इह तेला है इह पत्तियां दे किनारियां तों इहनूं पीला कर दिंदा है जदों इह रस चूसदा है, ते पत्ते उपर वल नूं मुड़ जांदे हन ते इक ठूठी दी तरह बन जांदे हन। सो इस दी रोकथाम लई इक दवाई है, कीटनाशक है 80 मिलीलीटर इकोटिन 5%, इहदी तुसीं स्प्रे करनी है 100 तों 125 लीटर पानी दे विच। ते इह जिहड़ी इकोटिन है इह निम आधारित कीटनाशक है, इह इक साडा सेफ कीटनाशक है, इहदी वरतों तुसीं कर सकदे हो। इसी तर्हां 2000 मिलीलीटर PAU निम दा घोल 100 तों 125 लीटर पानी दे विच घोल के तुसीं स्प्रे कर सकदे हो। होर जिहड़े कीटनाशक ने, जे लोड़ पैंदी है तां कॉन्फीडोर है जी 40 मिलीलीटर इहदी मात्रा है, एक्टारा है 40 ग्राम, मैलाथियोन है 560 मिलीलीटर। जे किसान वीरो थानू लोड़ पैंदी है तां ही कीटनाशक तुसीं इही वरतो जो मैं थानू दसे हन। जैसिड लई भिंडी दे उपर चिट्टी मक्खी रस चूसदे हन, जिवें थानू दस्या है पत्तियां दा रस चूसूगी, और ये विषाणु रोग भी पैदा करदे हन। मतलब ये है कि जे कोई विषाणु दा रोग है तां उहदे नाल की होगा कि ये जिहड़ा विषाणु है एक पत्ते तो चक्कूगी ते दूसरे पत्ते दे उपर ये रख दूगी, जिहदे नाल ये जिहड़ी बीमारी है पूरे खेत दे विच फैल जांदी है। इस करके सानू चिट्टी मक्खी नू रोकना बहुत जरूरी हुंदा है। इहदे लई तुसीं 200 मिलीलीटर PAU निम दा घोल या 80 मिलीलीटर इकोटिन 5% लै के 100 तों 125 लीटर पानी दे विच घोल के इहदा छिड़का करो। फिर है चितकबरी सुंडी, इहदा हमला भी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। हमले वालियां लंगरां कुमला जांदियां हन, सुक जांदियां हन ते फिर थल्ले डिग जांदियां हन। ते किसान वीरो, इस कीड़े दी रोकथाम लई जिहड़े मैं कीटनाशक दसन जा रही हाँ ओह हन कोराजन, इहदी मात्रा 50 मिलीलीटर है। फिर स्यूमिसीडीन है, इहदी मात्रा 100 मिलीलीटर है। प्रोक्लेम है एक कीटनाशक, वह 70 ग्राम है। सिंबुश है 80 मिलीलीटर। सो तुसी इना कीटनाशकों चो कोई भी एक स्प्रे कर सकते हो जे थानू लोड़ पैंदी है। इना कीटनाशकों नू तुसी मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है। इस तरह फुल गोभी है या गोभी है अपनी, उहदे उपर भी बहुत सारे कीड़े आंदे हन जिन्हां दे विचों तने दा गंडोआ है, चमकीली पिठ वाला पतंगा है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तने का गंडोआ जिहड़ा है यह जिहड़े तुसी जे थानू मिलते हैं ये जिहड़े फुल ने उनू तुसी पट के दब दो ताकि ये अगे ना फैले। सो चमकीली पिठ वाला जिहड़ा पतंगा है ये उही सितंबर महीने दे विच नुकसान करूगा। इस दियां सुंडियां पत्तियां नू खांदियां हन, ये पत्ते का हरा भाग खा के पारदर्शी झिल्ली छत दिंदियां हन ते कई बार पत्तियां च मोड़ियां भी कर दिंदियां हन। सो इस दी रोकथाम किसान वीरो बहुत जरूरी है। इस दी रोकथाम लई जिहड़े सेफ कीटनाशक ने, जिहड़े कि साडे मित्र कीड़ियां लई भी सेफ ने, ओह हन 300 मिलीलीटर डाइपल 8L या 300 ग्राम हॉल्ट WP। सो ये 7 दिनां दे वक्फे ते शाम नूं सानूं इन्हां दा छिड़का करना चाहिदा है। सो ये साडे जिहड़े दोनों कीटनाशक ने, ये साडे मित्र कीड़ियां लई साडे लई बहुत सेफ ने। इस तों इलावा होर कीटनाशक 240 मिलीलीटर सक्सैस 2.5 SC, 70 ग्राम प्रोक्लेम है, 130 मिलीलीटर एवोंट, 150 मिलीलीटर न्यूवलरॉन, 100 मिलीलीटर स्यूमिसीडीन। ये कीटनाशकों नूं तुसीं 100 तों 125 लीटर पानी दे विच स्प्रे कर सकते हो घोल के। सो किस

होने के लिए तुम्हारा या तुम्हारे पति का किसी संस्था का अध्यक्ष होना जरूरी है, या तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम अध्यक्ष खरीद सको, या तुम किसी प्रतिष्ठित पद पर हो, रिटायर्ड अफसर हो तो भी चलेगा। अर्थात तुम्हें बुलाने का कोई ना कोई फायदा तो होना अनिवार्य है, वर्तमान में या भविष्य में। या किसी ऐसे को बुलाया जाता है जिसमें उन्हें महाकवि होने की संपूर्ण संभावनाएं दिखाई दें। उसने उदास आवाज में कहा, हम इतने खुशनसीब कहां। मैंने सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हम बदनसीबों के कारण ही साहित्य जिंदा रहेगा, वरना ये महाकवि तो हर रोज कविता की हत्या करेंगे। वह भाषण सुनने के मूड में नहीं थी शायद, उसने अच्छा कहकर फोन काट दिया। पिछले दिनों मित्रतावश एक पुस्तक समारोह में गई। कार्यक्रम करवाने वाले भी मित्र, करने वाले भी मित्र, संचालक भी मित्र, श्रोता भी काफी हद तक मित्र, इसलिए मैं भी मित्रता निभाने गई। मैंने देखा चारों ओर मित्रता ही मित्रता थी, कविता कहीं नहीं थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कानाफूसी शुरू हो गई। एक ओर मेज पर 15-20 पुष्प गुच्छ रखे थे। मेरे मित्र ने कान में कहा, लगता है कार भरकर फूल लाए हैं, शायद हमें भी दें। मैं केवल मुस्कुराई। मेरी बुरी आदत है वक्त पर पहुंचने की। एक घंटा हो चुका था और अभी तैयारियां ही चल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ वक्त बर्बाद करने आई हूँ। आखिर कार्यक्रम शुरू हुआ और पुष्प गुच्छ आदान प्रदान होने लगा। इसको, उसको, तुमको, मुझको, आपको, उन्हें, इन्हें सबको पुष्प गुच्छ दिए गए। उन्होंने कविता के प्रोग्राम में नाना, मामा, चाचा, ताया, फूफा, ननद, देवर, मौसी, चाची, मामी, मित्र, शत्रु सबको बुलाया था। एक बार तो मुझे संदेह हुआ कि कविता कहीं है भी यहाँ, कहीं यह मुंडन समारोह तो नहीं। जो महाज्ञानी कार्यक्रम करवा रहे थे उनमें मुझे महाकवि की झलक दिखाई दी। वे बस महाकवि होने की कगार पर थे। महाकवि होने की प्रबल इच्छा हर मन में छिपी है। एक स्थापित कवि हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पर केवल कवि होना कोई मायने नहीं रखता। महाकवि जिसे दूसरे शहर के लोग भी जानते हों। उन्होंने दूसरे शहर के कवि को फोन किया, हमारे शहर में आप अपना कार्यक्रम करना चाहोगे। कवि पहले से तत्पर बैठा था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मेरा कार्यक्रम करवा दें, पैसा मैं स्वयं खर्च करूँगा। उन्होंने उसके पैसे से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। महाकवि होने का यह एक लक्षण है कि दूसरों के कार्यक्रम को साकार करना। दूसरे शहर का कवि अकेला नहीं आया, संग कुछ कवि लेकर आया, जैसे गुंडा कभी अकेला नहीं जाता। अब कार्यक्रम में दो पक्ष थे, दो अलग अलग शहर के कवि लेखक। आपस में कुछ विचार विरोध हुआ और काव्य कार्यक्रम युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन गया। कई दिन तक इसकी चर्चा होती रही, थूथू भी हुई और कवि ने महाकवि होने की इच्छा को तिलांजलि दे दी। अब वह केवल कवि बनकर अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य सेवा के लिए कवि होना ही पर्याप्त है कवि बाबू। कहीं कोई कार्यक्रम हो तो लोग कवि से नहीं महाकवि से संपर्क करते हैं। महाकवि का एक लक्षण यह भी है कि उसकी जेब में कई कवि होते हैं। वह किसी भी कवि की किस्मत सवार सकता है या बिगाड़ सकता है। वह सवारने पर आए तो तुकबंदी कवि को महान कवि बता सकता है, बिगाड़ने पर आए तो अच्छे कवि को अज्ञानी बता सकता है। लोग महाकवि से बहुत डरते हैं, उससे कभी बिगाड़ते नहीं। वह कवियों को नई नई जगह कविता पाठ का मौका देता है। कवि उसे माई बाप समझते हैं, मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे गालियां देते हैं। जिससे महाकवि नाराज हो जाए उसके बारे में वह कहता है, बस ये बहुत उड़ लिया, अब इसे जमीन पर लाना होगा। वह दूसरों को भी उसे नीचा दिखाने को कहता है, उसे साहित्य की दुनिया से बाहर का रास्ता दिखा देता है। महाकवि किसी राजनीतिक नेता से कम नहीं होता, तुम क्या जानो कवि बाबू। महाकवि साहित्य जगत का ईश्वर है। जिस तरह ईश्वर का सब पर नियंत्रण है, उसी तरह महाकवि भी साहित्य जगत पर नियंत्रण रखता है। वो चाहता है कि अपने इलाके के सभी कवि लेखकों को मुट्ठी में रखे, काम दूसरे करें और गुणगान उसका हो। उसे हर कार्यक्रम में बुलाएं, उसे फूल मालाएं पहनाएं, सिंहासन पर बिठाएं, तिलक लगाएं, अंगरखा उड़ाएं, जय जयकार करें, तस्वीरें खींचें, तस्वीरें अखबारों में छपवाएं, उसे खुदा माने। बस मैं ही मैं, दूसरों न कोई। महाकवि टोपियों का व्यापारी होता है। इसकी टोपी, उसके सर। बहुत टोपियां घुमाता है पर अपने सर पर हर बार

0: टोपी रखना नहीं भूलता। अपनी टोपी को वह राज मुकुट समझता है। बेचारे को पता ही नहीं कि राजाओं के दिन लद गए। वह दूसरे कवियों की किताबों पर टिप्पणियां करता है, पर कोई किताब नहीं पढ़ता। वह किताब मात्र देखता है, उसके पास दिव्य दृष्टि है। वह पहला और आखिरी पन्ना देखकर पूरी किताब के विषय में जान लेता है। वह टिप्पणी में ऊल जलूल बातें करता है, उसके भाषण का कोई सिर पैर नहीं होता। कवि लेखक से अपने संबंधों के बारे में बताता है, किताब पर कुछ नहीं कहता। यह महाकवि की विशेषता है, तुम क्या जानो कवि बाबू। महाकवि स्वयं को दूसरे कवियों से श्रेष्ठ समझता है। वह नए कवियों लेखकों की पुस्तकों में भूमिका लिखता है। उसके पास लिखने के लिए अपनी कविता कहानी कम ही होती है। वह अपनी लेखनी का सदुपयोग किताबों की भूमिका लिखने में करता है। पिछले दिनों कोई अपनी किताब पढ़ने को देने आया। मैंने उसके सामने ही किताब खोलकर पढ़नी शुरू की। दो पंक्तियां पढ़कर ही मैंने पूछा, भूमिका अमुक महाकवि ने लिखी है? उसने कहा, जी, पर आपने तो अभी दो तीन पंक्तियां ही पढ़ी हैं, आपने कैसे जाना? मैंने उत्तर दिया, मैं बस अपने शहर के महाकवियों को जानती हूँ। ये बहुत मेहनत से दो तीन पृष्ठ की भूमिका लिखते हैं या लिखवाते हैं और फिर आजीवन उसे हर पुस्तक पर फिट करते हैं। ये महाकवि का गुण है, आप अन्यथा ना लें। वैसे मैं भी अब बहुत से कवि लेखकों को जानने लगी हूँ, उनके दूरभाष नंबर भी मेरे पास हैं। इक्का दुक्का लोग मुझे भी पूछने लगे हैं कि हमारे संस्थान में कार्यक्रम है तो कुछ कवि चाहिए। मैं उनकी सुविधा अनुसार कवि लेखक भिजवाने लगी हूँ। पिछले दिनों मैंने अपने घर पर गोष्ठी रखी, कई साहित्यकारों को आमंत्रित किया, अपनी विदेश में रहने वाली मित्र को बुलाकर उसका रूबरू करवाया, उसे सम्मानित किया। मुझे लगता है कि मुझ में भी महाकवि के लक्षण आने लगे हैं। शायद मैं भी महाकवि होने की कगार पर हूँ। धन्यवाद।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी हिंदी व्यंग वार्ता महाकवि होने की कगार पर। वार्ताकार सन डॉक्टर दलजीत कौर। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण तुसी समात फरमाओ चंदन दास दी आवाज दे विच एक खूबसूरत गजल।

0: हुण तुसी समात फरमा रहे सी हरी हरन दी आवाज च एक खूबसूरत गजल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 8 बज चुके ने। बेलाई प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा सुनदे आ कुछ सुनेहियां तो बाद।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पेशे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

जी हाँ, जिंदगी हसीन है तद तक जब तक असी जिंदगी नू मान रहे हैं, जिंदगी नू जी रहे हैं। जब तक यह सह आ रहे ने तद तक यह जिंदगी है, तो जिंदगी है तो हसीन होनी चाहिए है। जेकर हसीन नहीं है तो फिर बहुत माड़ी गल है जी। इसनू हसीन बनाना पएगा, क्योंकि वक्त जड़ा है वह साढ़े हाथों के विचों रेत की तरह हर रोज़ हर पल हर सैकेंड गुजरता जा रहा है, निकलता जा रहा है। असी इसनू फड़ नहीं सकांगे। इस करके जब तक यह जिंदगी चल रही है इसनू माण लो, इसनू जी लो। जेकर आप जन्म दर की गल करिए ना पूरी दुनिया के विच कि हर रोज़ 24 घंटिया के दरम्यान तकरीबन 363,000 नवे बच्चे पैदा होंगे ने, यानी कि नवी जिंदगी जड़ी है वो इस धरती के उत्ते आती है, उसकी आमद होंगी है। तो हर रोज़ 24 घंटिया के दरम्यान 180,000 लोग इस दुनिया तो रुखसत हो जाते हैं, इस दुनिया नू छड़ जाते हैं। किन्नी वड्डी गिणती है। तो खुशी की गल है कि दुनिया के विच जड़ी जन्म दर है वो तकरीबन मौत दर तो दुगुनी है, यानी कि जड़े इस धरती के उत्ते बच्चे आते हैं, नवीं आत्मावां आउंदियां ने, नवी सोल्स आउंदियां ने, वो डबल ने जान वालियां दे नालों। इस करके दुनिया की जड़ी आबादी है वह तकरीबन हर रोज़ वधदी चली जा रही है। तो 183,000 जड़े ने बच्चे हर रोज़ इस पॉपुलेशन दे विच शामिल हो रहे ने, नवे बच्चे। तो जेकर पॉपुलेशन की गल करिए पूरी दुनिया दे विच तां इस वक्त 830 करोड़ लोग ने ना जड़े वो इस जिंदगी नू माण रहे ने, जिन्हां दे विच साडी भी गिणती शामिल है। मैं भी हाँ, तुसी भी हो, तो जड़े साडे सारे जने है दोस्त सुन रहे ने वह भी सारे इस चीज़ दे विच शामिल ने, जिन्हां दे कोल अजे भी जिंदगी जड़ी है वो है और इस जिंदगी नू मानना है, इस वक्त नू मानना है। तो बाकी तुसी सारे सियाने हो, क्योंकि जाण दा वक्त तो किसी नूं भी पता नहीं है, तो जाण तो पहला जिंदगी जड़ी मिली है उसनूं जी लेना चाहिए ना। आओ फिर इसे ही खुशी दे विच सुणदे आए प्यारा जिहा खूबसूरत गीत।

इंसान भी खरे सोने वर्गा हो जाता है। सो जिंदगी जेड़े भी एक्सपीरियंस सानू दे रही है उसनू देखो, सोचो, समझो, सीखो ते अगे वधो।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल इन ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तो जे एक शायर ने बहुत उम्दा तलाल डार उन्हां दा नाम है और उन्होंने जिंदगी नूं लेके बड़ी सोहनी एक शायरी लिखी है, छोटी जी कुछ चंद लाइना लिखिया ने, लेकिन गहराई इन्नी ज़्यादा है कि वाकई मतलब दिल खुश हो जाता है और समझ आती है कि काश असी भी इदा कर पाईए। कहंदे ने कि खुदा दी मर्जी ते मेरी मर्जी दे विच जो पेंडा है ओही तां दुख है। ऐ पेंडा इतना वधा लिया है, मैं दुख नूं वड्डा बना लिया है। मैं सोचा है डार कि जो पेंडा वध गया है इहनूं मुका ना देवां, खुदा दी मर्जी नूं अपनी मर्जी बना के इस दुख नूं मिटा ना देवां। है ना, कि कहंदे ने कि भी रब दी जो मर्जी हो रही है, जदों मैं उस दी मर्जी नूं कबूल नहीं करदा, जदों उस दे कीते हुए कम दे विच मैं राजी नहीं हुंदा, उस दी रजा नूं मन्नदा नहीं हां, इह जिहड़ी दूरी पैदा हो जांदी है मेरे विच तां रब दे दरमियान, इही जिहड़ी दूरी है ना उहदी मर्जी दे विच ते मेरी मर्जी दे विच, इही तां दुख है, यही तकलीफ दिंदा है, यही सानू परेशान करता है, यही सानू दर्द दिंदा है, पीड़ दिंदा है। तो जदों यह दूरी मुक जाती है, यानी कि जो रब कर रहा है ठीक है, असी उसकी रजा दे विच राजी हो जाने, तो फिर यह दुख मिट जाता है। जो उसकी मर्जी दे विच ते मेरी मर्जी दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता, तो दुख का नामो निशान नहीं रह जाता। लेकिन हुंदा यह है कि असी इस दी मर्जी नूं कबूल नहीं कर पाते, असी इस दी मर्जी दे विच राजी नहीं हो पाते, मन नहीं पाते, शिकायतां करदे आ, गिले करदे आ, शिकवे करदे आ, तो फिर दुख ही दुख मिलता है, फिर दर्द ही दर्द मिलता है। तो कहिंदे ने कि जेकर तुसी इस दर्द नूं मिटाउणा है, इस दुख तो छुटकारा पाउणा है, तो रब दी मर्जी नूं अपनी मर्जी बनाउणा पएगा। बेशक असी इस दी मर्जी तो एक मतलब चीज़ भी अलादा नहीं कर सकते, कि जो रब की मर्जी है वो उत्ते मैं अपनी मर्जी कभी भी चला नहीं सकता, कभी भी थोप नहीं सकता, जो उन्हें करना है वो करना ही है, असी उत्ते कुछ नहीं कर सकते, साड़ी मर्जी चल ही नहीं सकती। तो चाहे असी एदी रजा दे विच राजी रहिए, तो चाहे असी एदी रजा दे विच गुस्से रहिए, बट रहना तो रजा दे विच ही पएगा। तो फिर जेकर दर्द नहीं सहना चाहते, पीड़ नहीं सहना चाहते, तो इसकी मर्जी नूं मनना पएगा। हुण चाहे तुसी इस नूं रब दी दादागिरी कह लो या फिर इस दी बहुत वड्डी समझ कह लो, जो साड़ी समझ दे बराबर नहीं हैगी, असी समझते नहीं हाँ कि यह की चाहता है तो की नहीं चाहता। तो जिंदगी इस तरह ही चलती है जी, जेकर जिंदगी खुश दिली दे नाल बितानी है तो मर्जी मननी पैनी है। आओ इसे तरह दा ही गीत सुनते हैं।

तो अंदाज फिल्म का तुसीं इह गीत सुनिया जिहड़ा फिल्माया गया सी राजेश खन्ना ते हेमा मालिनी दे उपर और इस गीत नूं वखरे ही अंदाज दे विच चुलबुले अंदाज दे विच जिंदा दिली अंदाज दे विच गाया जी किशोर कुमार ने और किशोर कुमार दा अंदाज तां असीं जाणदे हां कि किन्ना हट के सी किन्ना वखरा सी लेकिन बहुत वधिया सी। तो इसे तरह ही ना जिंदगी दे विच बहुत सारे ऐसे लोग हुंदे ने जिन्हां दा जिंदगी नूं जीण दा अंदाज ही वखरा हुंदा है, उन्हां दा नज़रिया ही वखरा हुंदा है कि कुछ हट के वह जिंदगी नूं जीउंदे ने। तो इसे तरह का एक कहानी है, कहानी ना कह लो कि सच्चाई ही है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी इंसान जिसने मतलब पूरी दुनिया नूं एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिता। जिंदगी का वह मोड़ जिथे आके आम तौर पर लोग आराम लभदे ने, उस उम्र दे विच एक महिला ने दूजियां दी भलाई दे लई अपना सब कुछ दान कर दिता। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ 100 साल दे डॉक्टर के लक्ष्मी बाई जी दी, जिन्होंने पिछले साल अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यानी कि तकरीबन 3,40,00,000 रुपए एम्स भुवनेश्वर नूं दान कर दिते। उन्हां दा मकसद सिर्फ इको ही सी, वह चाहते सी कि उड़ीसा ते आले दुआले दीआं औरतां नूं कैंसर दा सही ते वधिया इलाज मिल सके। डॉक्टर लक्ष्मी की गल करिए तां उन्हां दा जन्म 1926 दे विच होया सी, यानी कि 2026 दे विच वो पूरे 100 साल दे हो गए। 100 साल की उम्र वो मान रहे ने और वाकई यहो जे जड़े चंगे इंसान होंदे ने उन्हां दी उम्र भी लंबी ही होनी चाहिए है। वो अपने जमाने दियां सब तो पढ़िया लिखिया महिलावां दे विचों एक सन। उन्होंने कटक दे SBS मैडिकल कॉलेज दे पहले MBBS बैच तो पढ़ाई की थी। जी हाँ, उस

0: और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है, उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है।

0: ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
2: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए X पर @ AI

0: AIR News Hindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
3: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
4: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और एनसीएस के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
2: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की अजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 वज चुके ने। हुण पेश है पंजाबी नाटक ए वी इतिहास है, लेखिका अजीत कौर।
1: बहुत चिर तो एक याद अज भी मेरे जहन च उंज ही उकरी हुई है। पाबी यानी मेरी नानी दे पीर मक्की वाले घर दी, घर दे गुरु ग्रंथ साहब वाले कमरे च जदों मैं प्रसाद लैण गई सां, उदों मैं बहुत छोटी सां। मेरी नानी अखां मिट्टी उत्थे बैठी सी, मैं चुप चाप उत्थे खड़ी रही उनां दे अखां खोलन दे इंतजार च। मेरी नज़र सामने कंध ते पई, काली मखमल उत्ते तिले नाल कढ़ी हुई एक तुक सी। ए मैं पहला कदे क्यों नहीं सी वेखी, शायद इस कमरे च कदे खड़ोती भी नहीं सी। नानी ने जदों अखां खोलियां तां मैनू उधर तकदे वेख्या ते उस लिखी तुक नू पढ़ के मैनू सुनाउण लगे।
2: निवन सु अखर खवन गुण जेपा मणिया मंत, एतरे पैने वेस कर तां वस आवे कन।
1: तां पढ़दियां पढ़दियां उन्हां दा गच भर आया ते आवाज़ कंबन लगी।
2: हे मेरी प्रकाश ने बनाया सी, प्रकाश मेरी थी, तेरी मासी।
1: मैं ता उत्थे ही चढ़ खड़ी हुई सा। मैं ना उना नू वराया, ना चुप कराउण दी कोशिश कीती। मेरी नानी दियां चार तियां सी ते दो पुत्तर। मेरी प्रकाश मासी उना दियां सारियां कुड़ियां तो बहुती पढ़ी लिखी, जहीन, अकलमंद ते सोहणी सी। ते भाईया जी

0: देखा था सही। थू थू, हाय हाय मैं मर जा, मेरी तो जुबान ही सड़ गई है। ऐसा लगता है जिन्हें सहर होवे। सहर? हाँ हो भी सकता है, पर क्यों? इन्हां मर्दां दा भी की भरोसा है।
1: खा लिया कैप्सूल?
0: नहीं जी।
1: नहीं दिए कुछ लग दिए? जदों दी तू पेकियां तो आई है तेरे तां तौरे बदले होए ने, इत्थों तक कि हुण मेरे आखे लगना भी भुल गई। डोर पौरी मेरे वल की वेख रही है तू?
0: माफ कर दियो, अगे तो इस तरह नहीं करांगी। दीपो मासी, दीपो मासी
2: आ गई है गुरुद्वारे?
0: हाँ आ गई हाँ। अज तो मासी उन्होंने मैनू सवेरे 5 बजे का उठाया, पहला गुरुद्वारे लै गए, उत्थे सेवा करते रहे।
2: अच्छा,
0: पर सवेर का कुट पानी का नहीं पीन दिता उन्होंने।
2: क्यों? तू गुरुद्वारे लंगर छक लेंदी?
0: किदा छक लेंदी लंगर? उत्थे मां की दाल हुंदी है, जे खा लेंदी तो निक्की का ढिड दुखना सी।
2: हाय नी, मामा नू कई कई जफर जालने पैंदे ने, तू उत्थों चाह ही पी लेंदी?
0: इन्होंने पी नहीं दिती। मैनू तो इंज लगता है जिवें इन्होंने मैनू जान बुझ के भुखे रखिया।
2: वो क्यों?
0: कल की कोई दवाई जी लियाए ने, कहिंदे ने वो निर्णय कॉलेज खोनी है।
2: कादी दवाई है? वेख जाज के खाई, जिन्हां जनानियां दे कुड़ियां जम पैन उन्हां दे बंदे कई कार्य करदे ने।
0: मासी इस करके ते तेरे कोल आई हाँ, उन्होंने घर जांदे कहना है दवाई खा। तू मैनू एक अद्ध फुलका खवा दे, मेरा नीर ना पन दे, आपे दवाई का कोई घट सर हो।
1: प्रकाश
0: जगा है सारे बनेरियां ते मोमबत्तियां?
1: हाँ वे जगा आया, सारिया के कोठियां ते जगदियां मोमबत्तियां बड़िया ही सोहनिया लग रही ने।
0: अच्छा मैं भी देखांगी बाद विच।
1: हुण भला की करन लगी है तू?
0: सब्जी नूं तड़का लगाउण लगी हाँ।
1: बाद विच लगा लई तड़का, जरा अंदर आ कम है।
0: मैं सब्जी नूं तड़का लगा के हुणे आउनी आ।
1: नहीं नहीं पहला आ तू।
0: चंगा दसो की कम है?
1: आ वेख मेरी तली ते की है।
0: दवाई दा कैप्सूल?
1: दवाई दा नहीं, जहर दा कैप्सूल। इस विच संख्या है।
0: ए मैनू क्यों दिखा रहे हो?
1: वेख प्रकाश, मैं तेरे कोलो कुछ लुकाना नहीं चाहता। गल है कि मैनू तेरी बलवंत भैन दी ननान तारी नाल इश्क है, ते ओदे बिना मैं हुन रह नहीं सकता। हुन सिर्फ इको रस्ता है।
0: केड़ा रस्ता?
1: ए कैप्सूल जा तू खा ले जा मैं खा लवा, मतलब जा तू मर जा जा फिर मैं मर जावा।
3: पति परमेश्वर हुंदा है, परमेश्वर जो भी कहे ओदी रजा सिर्फ खामोशी नाल मन लैन तो सिवा कोई चारा ही नहीं हुंदा। दीए
0: नहीं, अपने सामने ते अपनी मर्जी नाल तुहानू इस तरह खान दिया जहर। जे तुहाडा एहो फैसला है तो मैं खा लेनी है कैप्सूल।
1: ले ले कैप्सूल ते आ रहा पानी दा गिलास।
0: पर इस कुड़ी दा की होएगा? ए नहीं हो सकदा कि तुसी तारी नाल व्याह कर लो ते मैं गोली बन के इस कुड़ी नूं पाल लवा।
1: नहीं नहीं नहीं, ए नहीं हो सकना, तेरे हुंदिया ए नहीं हो सकता।
0: ठीक है, तुहाडी मर्जी सिर मत्थे ते।

0: कुछ नहीं होया मासी, फिक्र वाली कोई गल नहीं, लंगर दी रोटी ज्यादा खा ली सू, मां छोलियां दी दाल लगदा हजम नहीं हुई इनू।
1: लंगर दी रोटी ओ तां कल दी भुखी है, एक रोटी मेरे घरों खा के गई सी, उल्टी च तां खून आ रहा, घबराना थी घबराना, मैं तेरे मासड़ नूं सद्दी आ, ओ डॉक्टर नूं बुला के लियांदे ने, ते नाल लौर

0: तेरे माँ बापू नू भी फोन कर देंदे ने। तेरी हालत तो बिगड़ती जा रही है।
1: इस बीबी ने कुछ खा लिया है। आ देखो खून दिया उल्टी आ रही है ने। पुलिस केस है, पुलिस नू इतला करनी पाएगी।
0: हाँ पुलिस नू इतला कर देने हैं। इन्हें माँ पे उन्हें लाहौर फोन कर देते हैं, वो सवेर तक पहुंच जाएंगे।
1: ठीक है, मरीज की हालत इस वेले बहुत नाजुक है, हॉस्पिटल ले जान जोगी नहीं है, सो इत्थे इलाज शुरू कर देने हैं।
2: प्रकाश मेरे को गलती हो गई, मैं माफ कर दे, मैं तेरे पैरों से सिर रख के माफी मांगता। तू बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर साहब कहते ना कि सब ठीक हो जाएगा, सारा जहर निकल गया है, नवा खून चढ़ा रहे ने। प्रकाश देख मेरे वाल इंज ना वेख, प्लीज मेरे वाल इंज ना वेख, कुछ तो बोल, मैनु एक बार माफ कर दे, बख्श दे मैनु, मैं तेनु राणी बना के रखांगा राणी। जे जे तू पुलिस नु कोई गल दसी तो मैं जेल में सर जमागा, ते तू इस संसार विच किवें गुजारा करेगी? एक सजा याफ्ता प्यो दी कुड़ी नु कौन कबूलूगा? तू सचमुच देवी है देवी, तू मैनु माफ कर दे, इस पप्पी नु बख्श दे, मैं सारी उम्र तेरे चरण धो के पीवांगा।
3: तुसी निश्चिंत रहो, मैं पुलिस नु कुछ नहीं खांगी।
4: मेरी चक्की थी की लोड़ पई सी तेनु खुद सिर खान दी,
3: और की कर दी, जदो मैनु उन्हां ने साफ साफ कह दिता कि ओ तारी बिना नहीं रह सकते, मेरी दुनिया तो उदों ही खत्म हो गई सी, ते इन्हां हालात विच मैं करदी ते की करदी?
4: तू अपनी कुड़ी नूं चुकदी ते साडे कोल लाहौर आ जांदी,
3: तुहाडियां दहलीजां ते बह के सारे खानदान दी इज्जत मिट्टी च रोलदी, भाईआ जी दी पग नूं ताक लाउंदी। मैं तुहाडा हुक्म मन्निया है, जिस घर विच डोली आई सी उहदे विचों ही अर्थी निकलेगी।
4: बस कर दिए बस कर, सानू की पता सी कि तैनू एडे वड्डे इम्तिहान विचों गुजरना पवेगा, मेरी लाडा नाल पाली मेरी धीए।
3: किस्मत दी लिखी नू कौन बदल सकता है?
5: डॉक्टर साहब तुसी मेरी धी प्रकाशो नू चेक कर लिया, हुण कैसी है उहदी तबीयत?
1: सरदार साहब मुबारक होवे, अज तुहाडी धी खतरे तो बाहर आ गई है।
5: सच डॉक्टर साहब, तुहाडा शुक्रिया किस तरह अदा करां?
1: उसकी लोड़ नहीं बजुर्गो, ये तो साडा फर्ज है, मेदे दे जख्म पूरी तरह ठीक हो गए ने।
5: लख लख शुक्र है वाहेगुरु जिन्होंने मेरी धी नूं दोबारा जन्म दिता।
1: तुसी ठीक कहंदे हो सरदार साहब, अज तुसी रब दा नां लैके अपनी धी नूं दाल दा पानी दिओ, कुछ खावेगी तो शरीर में ताकत आवेगी।
5: बहुत अच्छा डॉक्टर साहब,
1: पर पहला दो तीन चम्मच ही देना, हौली हौली बदलते जाना।
5: जी डॉक्टर साहब।
1: अच्छा मैं चलना जी।
5: चंगा डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत बहुत मेहरबानी।
6: प्रकाशो दी मां
7: की गल है जी?
6: ओ हुण क्यों मुंह लटकाया, हुण तो खुश हो, डॉक्टर साहब दस गए ने कि हुण प्रकाशो खतरे तो बाहर है, ते नाले कह गए ने कि इनू दाल दा पानी पिवाना शुरू कर दियो, पर पहला दो दो ते फिर बाद विच बता देना।
7: अच्छा मैं हुणे बनानी है दाल दा पानी, दाल पानी वर्गी। चंगा, वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है।
2: प्रकाश कौर उदों तो बच गई पर अज नहीं बचेगी। आ जिहड़ी दाल है ना कौली विच, जेड़ी तेरी मां ने बनाई है तेनू पिलाउण दे लई, लै मैं इस विच जहर मिला दिता है, अज तेरा खात्मा पक्का।
7: गल सुनो।
6: हाँ वो गलां तां फेर भी हुंदियां रहणगियां, पहलों कुड़ी नूं दाल दा पानी पिया, कई दिनों तो भुखी है बेचारी,
7: वो तां कौली विच पा के

0: जलंधर से श्री कृष्ण लीला जी पर कुछ शेर आपकी नजर करूंगा।
1: इरशाद।
0: कन्हैया तुमने ही मेरी कलम को बल दिया है, कन्हैया तुमने ही मेरी कलम को बल दिया है, जो रुक जाऊं मैं लिखते तुमने हल दिया है।
1: वाह वाह।
0: अदब तो था अंधेरी राहों में फिरता भटकता,
1: क्या बात,
0: तुम्हारी ही इनायत ने सुनहरी पल दिया है।
2: बहुत अच्छे,
1: सुनहरी पल दिया है।
0: श्री कृष्ण महाराज ने भारत वर्ष का था उद्धार किया, श्री कृष्ण महाराज ने भारत वर्ष का था उद्धार किया, देश धर्म पर मिटने वालों पर था सदा उपकार किया।
2: बहुत अच्छे।
0: जन्म लिया कान्हा ने जेल की ऊंची बंद दीवारों में, जन्म लिया कान्हा ने जेल की ऊंची बंद दीवारों में, गूंजी आवाजे नब से हुआ कंस व्यभीत नगाड़ों से, जेल के खुल गए द्वार सभी, जेल के खुल गए द्वार सभी, मोहन के मधुर इशारों से उसी रोज से कंस का जीना।

0: जन्म लिया कान्हा ने जेल की ऊंची बंद दीवारों में, जन्म लिया कान्हा ने जेल की ऊंची बंद दीवारों में, गूंजी आवाजे नब से हुआ कंस व्यभीत नगाड़ों से, जेल के खुल गए द्वार सभी, जेल के खुल गए द्वार सभी, मोहन के मधुर इशारों से, उसी रोज से कंस का जीना कान्हा ने दुश्वार किया।
1: बहुत अच्छे,
2: क्या बात।
0: संगीन थे पहरे, संगीन थे पहरे, रात अंधेरी, यमुना भी उफान पे थी, वासुदेव को जान से प्यारी, सुरक्षा नन्ही जान की थी।
2: क्या बात।
0: प्रवेश हुए यमुना में जब, प्रवेश हुए यमुना में जब, यमुना भी इसी अरमान में थी, पांव छुए कान्हा के और यमुना ने था सत्कार किया।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: नटखट नंदलाला था अलग सभी वृंदावन के दुलारों से।
2: क्या बात।
0: नटखट नंदलाला था अलग सभी वृंदावन के दुलारों से, युद्ध में कान्हा दऊ भैया लड़ पड़ते संग हजारों से, कंस के योद्धा घबरा जाते, कंस के योद्धा घबरा जाते कान्हा की ललकारों से, एक दिन आखिर बाल गोपाल ने कंस का भी संहार किया।
1: बहुत अच्छे,
2: क्या
1: बहुत
2: अच्छे, क्या बात।
0: गोकुल धाम के वासियों पर कान्हा ने राज किया दिल पर, गोकुल धाम के वासियों पर कान्हा ने राज किया दिल पर, नए युग का आगाज किया हर जन ने कान्हा से मिलकर।
1: बहुत अच्छे।
0: देश प्रीत कान्हा की देख
2: जी,
0: देश प्रीत कान्हा की देख, सब ने था नाज किया इन पर, कामना जो कर पाया कोई श्री किशन जी ने वो काम किया। शिशुपाल जो अपने आप में महाबली कहलाता था, शिशुपाल जो अपने आप में महाबली कहलाता था, उसके खौफ से हर एक योद्धा आंखें मूंद रह जाता था, ऐसा हर एक पापी प्राणी श्री कृष्ण जी से घबराता था, दुष्टों को मौत की नींद सुलाकर जन जन पर उपकार किया।
1: बहुत अच्छे, बहुत
2: अच्छे। क्या बात है, क्या बात है।
0: कौरवों ने पांडवों का हक देने से जब इनकार किया, कौरवों ने पांडवों का हक जब देने से इनकार किया, बड़े यत्न किए कान्हा ने, बड़े यत्न किए कान्हा ने, आखिर युद्ध को स्वीकार किया, विराट रूप अर्जुन को दिखाकर गीता ज्ञान उपहार दिया, पितामह ने जान लिया कान्हा को चरणों में सत्कार किया।
1: बहुत अच्छा।
0: गीता का ये ज्ञान है ऐसा, गीता का ये ज्ञान है ऐसा, जैसे हर गहरा सागर एक बूंद जो छू जाए मन को, भर जाए प्रेम से मन गागर, इंसान को चैन है मिल जाता कान्हा के चरणों में आकर, अदब ने लिखा है जो अब तक श्री कृष्ण का है उपकार किया।
1: बहुत अच्छे,
0: श्री कृष्ण का है उपकार किया,
2: क्या बात।
0: श्री कृष्ण महाराज ने भारत वर्ष का था उद्धार किया, देश धर्म पर मिटने वालों पर था सदा उपकार किया।
1: बहुत अच्छे,
0: सदा उपकार,
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत खूब अदब जी, बहुत खूब। जन्माष्टमी आने वाली है और हमारे देश में यह त्योहार दिल से, मन से, भावों से, रंगों से, न जाने किस किस और ढंग से मनाया जाता है। हम सभी श्रद्धेय हैं भगवान श्री कृष्ण के और हम आभारी हैं अदब जी के, उन्होंने वृंदावन, गोकुल और हमारे इतिहास को गौरवान्वित किया, और इतिहास को गौरवान्वित करने का जो माध्यम चुना है कविता, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम आपके आभारी हैं। श्रोतागण बहुत मोहित हुए होंगे ऐसी मेरी आशा है। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय विनोद गोयल जी से कि वो अपना कलाम लेकर पेश हों। आदरणीय विनोद गोयल जी,
1: एक गजल के कुछ अशार आपको सुनाते हैं।
2: इरशाद।
1: मुश्किलें आई तो ये बदली है सूरत हाल की, मुश्किलें आई तो ये बदली है सूरत हाल की, जर्द पड़ने लग गई लाली तुम्हारे गाल की।
2: क्या बात, क्या बात।
1: जर्द पड़ने लग गई लाली तुम्हारे गाल की, और आस जिसकी हम लगाकर आज तक बैठे रहे, आस जिसकी हम लगाकर आज तक बैठे रहे, मेरे दरवाजे पे आई प्यार की वो पालकी, मेरे दरवाजे पे आई प्यार की वो पालकी, मालपुओं तक कभी अपनी नजर जाती नहीं, मालपुओं तक

0: भी अपनी नजर जाती नहीं, जिंदगी अपनी है चिंता सिर्फ रोटी दाल की।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जिंदगी अपनी है चिंता सिर्फ रोटी दाल की, क्या कहें तुझसे कि तू भी छोड़ कर जाने लगी। क्या कहें तुझसे, तू भी छोड़ कर जाने लगी। जिंदगी हमने तेरी बरसों से देखभाल की।
1: क्या बात,
0: जिंदगी हमने तेरी बरसों से देखभाल की। क्यों भला मेरी तरफ सब तैर कर आने लगी। क्यों भला मेरी तरफ सब तैर कर आने लगी। ये सुनहरी मछलियां तो थी तुम्हारे ताल की।
1: क्या बात,
0: क्यों भला मेरी तरफ सब तैर कर आने लगी।
1: क्या बात, क्या बात।
0: ये सुनहरी मछलियां तो थी तुम्हारे ताल की, और अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाए सदा। अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाए सदा। फिर क्यों उपमा आप देने लग गए कंगाल की।
1: क्या बात, क्या बात।
0: फिर क्यों उपमा आप देने लग गए कंगाल की। और कल तलक बिन खौफ के तुम घूमते फिरते रहे। कल तलक बिन खौफ ही तुम घूमते फिरते रहे। अब तुम्हें पढ़ने लगी क्यों कर जरूरत ढाल की। अब तुम्हें पढ़ने लगी क्यों कर जरूरत ढाल की। हम तो लंगर हाथ में लेकर सदा खाते रहे। हम तो लंगर हाथ में लेकर सदा खाते रहे। आप क्यों करने लगे बातें कटोरी थाल की।
1: क्या बात,
0: आप क्यों करने लगे बातें कटोरी थाल की। और हम तो छोटे आदमी हैं सबको ये कहते रहे।
1: क्या बात,
0: हम तो छोटे आदमी हैं सबको ये कहते रहे। बोल अब खुलने लगी है आपकी हर चाल की।
1: क्या बात,
2: बहुत अच्छा।
0: और मुश्किलें आई तो ये बदली है सूरत हाल की। जर्द पड़ने लग गई लाली तुम्हारे गाल की।
1: क्या बात, जर्द पड़ने लग गई
0: लाली तुम्हारे गाल
3: की।
0: अब मैं महेश कुमार शर्मा शरण जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजें।
1: शुक्रिया गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आप सबकी नजर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा।
0: इरशाद।
1: तहत में, गमों की आंधियों में भी रही झनकार कदमों में।
0: अच्छा।
1: गमों की आंधियों में भी रही झनकार कदमों में, झुकाया आसमानों को यहाँ हर बार कदमों। झुकाया आसमानों को यहाँ हर बार कदमों में। और शेर है, न खाते हैं किसी के बाप का हम भी हठीले हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: न खाते हैं किसी के बाप का हम भी हठीले हैं। जिए खुद शान से हर पल रहे संसार कदमों में।
0: वाह वाह।
1: जिए खुद शान से हर पल रहे संसार कदमों में। लड़ो ना जात पर ना धर्म पर ना रंग पर साथी।
0: अच्छा।
1: लड़ो ना जात पर ना धर्म पर ना रंग पर साथी। गिरा डालो अभी नफरत भरी दीवार कदमों में।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: गिरा डालो अभी नफरत भरी दीवार कदमों में। जो तकते थे ना अब तक आज किस्मत के बदलने से।
0: अच्छा।
1: जो
0: तकते
1: थे ना अब तक आज किस्मत के बदलने से। सुबह से आन बैठे हैं गुले गुलजार कदमों में। सुबह से आन बैठे हैं गुले गुलजार कदमों में। रहे ऊंचा तिरंगा देश का हम सब यही चाहें।
0: बहुत अच्छे।
1: रहे ऊंचा तिरंगा देश का हम सब यही चाहें। खड़े हैं आज सीना तान पहरेदार कदमों में।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्मन जी
1: शुक्रिया,
0: बहुत अच्छे।
1: शेर है, बड़ी धीमी चली ही जा रही थी जिंदगी मेरी। बड़ी धीमी चली ही जा रही थी जिंदगी मेरी। मिला जो साथ हमदम का पड़ी रफ्तार
0: कदमों।
1: मिला जो साथ हमदम का पड़ी रफ्तार कदमों में।
3: शर्मन जी बहुत खूब
1: शुक्रिया। आदब साहब, लिया जो खींच तूने हाथ मेरी ही हिफाजत का। तवज्जो दीजिए।
0: अच्छा,
1: एक अलग किस्म का शेर है। लिया जो खींच तूने हाथ मेरी ही हिफाजत का। उतरती ही गई इज्जत भरे बाजार। उतरती ही गई इज्जत भरे बाजार कदमों में। किसी मासूम की अजमत लुटी है यह खबर ना हो। किसी मासूम की अजमत लुटी है यह खबर ना हो। उठानी है बड़ी मुश्किल पड़ी अखबार
2: वाह वाह
1: उठानी है बड़ी मुश्किल पड़ी।

0: है कि भाव किस में ज्यादा गहरा है। लेकिन भाव अपने आप में कविता का मूल तत्व होता है, तो उसी मूल तत्व को मुक्त कविता के माध्यम से राजवंती मैम अपने आप में एक मुक्त व्यक्तित्व है, मैं ऐसा कहूं तो भी कोई औचित्य
1: बनता है
0: अतिशयोक्ति नहीं बनती।
2: बिल्कुल ठीक।
0: तो मैं अब दूसरे राउंड में हमारे आदरणीय वरिंदर अदब जी को गुजारिश करूंगा कि कुछ शब्द अपने मन के और कुछ शब्द इस दुनिया के हमारे श्रोताओं के सम्मुख रखें। आदरणीय अदब जी,
2: श्री कृष्ण जी की पुजारण दीदार की तमन्ना करती है, उस पे चंद शेर आपकी नजर है। मेरा प्रणाम लाखों बार एक दीदार की खातिर, मेरा प्रणाम लाखों बार एक दीदार की खातिर, मिला है ये जन्म मोहन तेरे दीदार की खातिर।
0: बहुत खूब।
2: तमन्ना है मेरी इतनी तेरा दीदार पाना है, है जन्मों से जो मन में प्रीत उसको आजमाना है।
1: बहुत अच्छे।
0: क्या बात।
2: सवाली दर से वो तेरे कभी खाली नहीं जाता, लगा दे जान की बाजी जो तेरे प्यार की खातिर।
0: क्या
1: बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: तेरा मन ही मन में हर पल दीदार कर रही हूँ, तेरा मन ही मन में हर पल दीदार कर रही हूँ, तेरे आने का कन्हैया इंतजार कर रही हूँ।
0: क्या बात, क्या बात।
2: मेरे मन में सांवरे तू इस कद्र बस गया है, मेरे मन में सांवरे तू इस कद्र बस गया है, तेरी प्रीत का ये सागर नस नस में रच गया है, तेरे दर्श की दीवानी मैं पुकार कर रही हूँ। तेरे दर पे सर झुका है, तेरे दर पे सर झुका है, जन्मों से हूँ पुजारन जोली फैलाए बैठी तेरी प्रीत में बिखारन।
0: क्या बात, क्या बात।
2: कब होगी करुणा तेरी इंतजार कर रही हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: हद हो चुकी है कहना तेरे आने की खबर थी, हद हो चुकी है कहना तेरे आने की खबर थी, क्या लगन थी मेरी झूठी मेरी आहें बेअसर थी।
1: वाह,
0: क्या बात है।
2: मेरी
0: बात?
2: प्रीत है ये पावन फरियाद कर रही हूँ।
0: फरियाद कर रही, क्या बात है, क्या बात।
2: फिजाएं महक रही हैं घटाएं बरस रही हैं, फिजाएं महक रही हैं घटाएं बरस रही हैं, तेरे आने की है आहट आंखें बरस रही हैं, रहमत हुई है तेरी दीदार कर रही हूँ।
0: और
2: दीदार कर रही हूँ तो दीदार के सामने कुछ शेर कर्ज है कि तुम हो सामने मेरे क्या हाले दिल सुनाऊं मैं।
1: अच्छा।
2: तुम हो सामने मेरे क्या हाले दिल सुनाऊं मैं, सभी तुझको खबर है अपने मुख से क्या बताऊं मैं, तेरी कृपा से सांवरिया तेरा दीदार पाया है, न जाने कितने जन्मों से ये मौका हाथ आया है, तुम्हारी राह में आंखें बिछाए हूँ मैं मुद्दत से, बड़ी मुश्किल से पाया है नज़र कैसे हटाऊँ मैं, नज़र कैसे हटाऊँ मैं, तेरे दीदार के सम्मुख जहाँ की जन्नते क्या है, तेरे दीदार के सम्मुख जहाँ की जन्नते क्या है, तेरा है हाथ सर पे दो जहाँ की दौलते क्या है, खुशी मन को मिली है जो जिक्र मैं कर ना पाऊँगा, लब खुलते नहीं मेहमान तुम्हारी कैसे गाऊं मैं, तुझे पाकर नहीं कोई ख्वाहिश और अब मेरी, नहीं गम जिंदगी और मौत का अब फासला क्या है।
1: बहुत अच्छे,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: मोहन अर्ज है मेरी अपना बना के रखना, काबिल तो मैं नहीं हूँ चरणों के पास रखना, मेरा चरणों में नमन है विश्राम कर रही हूँ, मेरा चरणों में नमन है
0: विश्राम कर रही हूँ। बहुत खूब अदब जी, बहुत खूब,
1: बहुत अच्छे, बहुत
2: विश्राम कर,
0: बहुत खूब। अब मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय विनोद गोयल जी से कि अपनी एक और प्रतिनिधि रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय विनोद गोयल जी,
1: अभी मैडम मान साहिबा ने एक अपनी कविता खुली सुनाई, मुझे एक शेर याद आ गया, वो भी सुन लें
0: जी।
1: बीते पल की एक चुवन भी मन को यदि सहलाती है
0: जी,
1: बीते पल की एक चुवन भी मन को यदि सहलाती है, बीड़ी के टुकड़ों में भी एक अगरबत्ती जल जाती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: अब अपनी गजल के चार शेर सुना दें आपको।
0: स्वागत है।

0: गोयल साहब स्वागत है जी।
1: जा बसे परदेश में घर फिर तो इतना चाहिए, कोई अपने देश का बस एक बंदा चाहिए।
2: बहुत अच्छा।
1: जा बसे परदेश में घर फिर तो इतना चाहिए, कोई अपने देश का बस एक बंदा चाहिए
0: जी।
1: मांगने आए हो तो खाली ना भेजेंगे तुम्हें।
0: क्या बात।
1: मांगने आए हो तो खाली ना भेजेंगे तुम्हें, खुल के बोलो आपको मुझसे भला क्या चाहिए।
0: क्या बात, वाह जी। क्या बात।
1: खुल के बोलो आपको मुझसे भला क्या चाहिए, और खेल का मैदान है फत्तू का पिंगला घर नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: खेल का मैदान है फत्तू का पिंगला घर नहीं, कोई अपनी टीम का लूला न लंगड़ा चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: कोई भी अपनी टीम में लूला न लंगड़ा चाहिए, अमन के ख्वाह है मगर ताकत में कम ना आकिए। अमन के ख्वाह है मगर ताकत में कम ना आकिए, अब ना कोई भी हमें सरहद पे झगड़ा चाहिए।
0: क्या बात,
1: अब ना कोई भी हमें सरहद पे झगड़ा चाहिए, आपको तकलीफ का मेरी जो इतना ध्यान है, कोई पगडंडी नहीं सीधा सा रास्ता चाहिए।
0: क्या बात, बहुत खूब।
1: कोई पगडंडी नहीं सीधा सा रास्ता चाहिए। अब ये एक दो शेर मेरी फैमिली के हो गए हैं, ये भी सुन लें
0: जी।
1: चार पैसे दे ना दे पर आपका रखे ख्याल, चार पैसे दे ना दे पर आपका रखे ख्याल, बात जो माने तुम्हारी बस वो बेटा चाहिए। बात जो माने तुम्हारी बस वो बेटा चाहिए, और पोते की चूचू का भी कोई तो कीजिए इलाज। पोते की चूचू का भी कोई कीजिए पक्का इलाज, अब नहीं है क्लास तो सुंदर सा बस्ता चाहिए। अब नहीं है क्लास तो सुंदर सा बस्ता चाहिए, जा बसे परदेश में घर फिर तो इतना चाहिए, कोई अपने देश का बस एक बंदा चाहिए।
3: बहुत ही अच्छे
0: गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
1: अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश कुमार शर्मा शर्मन जी से कि वो अपने कलाम से नवाजे।
0: शुक्रिया गोयल साहब। मैं एक गजल आपकी नजर पेश कर रहा हूँ कि ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते, ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर।
3: बहुत अच्छे शर्मन जी, बहुत अच्छे।
0: ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर आते हैं। और तवज्जो दीजिएगा, बोलकर झूठ बता काम उठाकर थैला।
1: अच्छा।
0: बोलकर झूठ बता काम उठाकर थैला, बेवजह घूमते बाजार नजर आते, बेवजह घूमते बाजार नजर आते हैं, ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं। और जिनके छूने से ही चल पड़ती थी जीवन गाड़ी,
1: अच्छा,
0: जिनके छूने से ही चल पड़ती थी जीवन गाड़ी, जंग खाए हुए औजार नजर
2: आते,
0: जंग खाए हुए औजार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर आते हैं। और सोच की आंख में जब गर्द पड़े नफरत की, सोच की आंख में जब गर्द पड़े नफरत की, काम के लोग भी बेकार नजर आते हैं, जो सरे आम करें रोज तिजारत सुर की,
1: सुर की
0: बेसुरे भी उन्हें फनकार नजर आते हैं। और शेर है, घोंट रिश्तों का गला जो भी यहाँ है जिंदा, घोट रिश्तों का गला जो भी यहाँ है जिंदा, जिंदगी में बड़े बेजार नजर आते हैं। और मक्ते का शेर है, आपके पाप में दे साथ यहाँ जो शर्मन, आपके पाप में दे साथ जहाँ यो शर्मन, गर्ज की आंख से दिलदार नजर, गर्ज की आंख से दिलदार नजर आते हैं, ढल गई उम्र मुझे यार नजर आते हैं, जब भी मिलते हैं वो लाचार नजर आते हैं।
3: बहुत अच्छा।
0: सभी कवियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
4: हुणे तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम काव्य गोष्ठी। अज की इस काव्य गोष्ठी के भाग लैन वाले कवि सन राजवंती मान, महेश कुमार, वरिंदर कुमार ते विनोद गोयल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। हुन पेश प्रोग्राम गजलें। इस प्रोग्राम की पहली गजल समात फरमाओ गुलाम अली की आवाज़

आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम गजलें। अगली गजल साधना सरगम दी आवाज़ च।

वो जो हो चुका है, वो जो खो चुका है, उसमें तुम्हारी कोई खता भी नहीं। वो जो हो रहा है, वो जो खो रहा है, उसका तुम्हें कुछ पता भी नहीं। वो जो हो जाएगा, वो जो खो जाएगा, उसमें तुम्हारी कोई रजा भी नहीं। इस हाल को ही जिंदगी कहते हैं शायद, कोई मोह छूटा भी नहीं, कोई मोह बचा भी नहीं।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਜ਼ਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਭਵਤਾਰਿਣੀ। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है।

0: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council (DAC) has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
2: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport today, Railway Minister Ashwini Vaishnav emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for

शाजे मंसूर दीवाज सदके ढोल माइया आवै जा मेरे कोल माइया गीत नाल शुरुआत की प्रोग्राम दी। मैं हरप्रीत एक बार फिर तो थोड़ा सारे का कर रहा हाँ स्वागत प्रोग्राम सौगात दे विच जुड़ी है जी यह महफिल जिस व्हाट्सएप के प्यारे प्यारे थोड़े व्हाट्सएप के सुनेहे पहुँचने शुरू हो गए हैं। करांगे शुरुआत इस प्रोग्राम की साडे जिमें कि इस गीत नाल प्रोग्राम की शुरुआत कर ही चुके हाँ। अगला गीत तो इस तो बाद फोन लाइन की फरमाइश तुहाडे नाल सांझी करांगा। प्रोग्राम दे विच जिहड़े भी स्रोते साडे जुड़ रहे हैं एक बार फिर तो इस प्रोग्राम दे विच सब दा इस्तकबाल करदा हाँ। अगला गीत सुनते हाँ अमरिंदर गिल दी आवाज़।

0: गाना केड़ा सुनाइए?
1: गाना सुना दो जसविंदर बिट्टी दा
0: पतासे। जी सतविंदर बिट्टी दा ठीक, हाँ नचदे सिरों पतासे वार गया। ठीक है लो जी, सतविंदर बिट्टी की आवाज़ सुनते हैं जी। मनजीत जी की फरमाइश के उत्ते दिल्ली आई जी सानू ये फरमाइश, सुनते हैं गीत।

0: आशक लोग ते कमले रमले दुनिया बड़ी सियाणी चिट्टे दिन ते कालियां रातां खांदे जान जवानी की मुनियाद है बंदिया तेरी तू फानी मैं फानी रंगे जाइए जे दिल जावे ढोल दिलां दा जानी ओ मैं गावां जुगनी। जुगनी ऐसा किरदार जेड़ा कि हुस्न च लबरेज है, हुस्न दी जड़ी जिन्नी सिफत कर सकीए उन्नी घट है जुगनी दी। एक ऐसी एक ऐसा साढ़े सभ्याचार का वो एक अंग है जिहड़ा कि गायकी विच ऐसा आया, पर वो थां थां ते उस दे हुसन की तारीफ हो रही है, पर वो जिंदगी दे असल सच नूं नाल दसदी है कि हुसन जिहड़ा है केवल ते केवल सिर्फ ते सिर्फ वो ही नहीं जिहदे करके मेरी तारीफ हो रही है, इन्हें तो एक दिन चले जाना है। तू भी फानी मैं भी फानी की मुनियाद है बंदिया तेरी। सुन रहे सी असी ए जुगनी द रंग मिठा सिंह बंडालवी की आवाज़ देविच ते अगली फरमाइश सानू व्हाट्सएप के जरिए पहुंची है जी। स्वागत करते हैं उन्होंने बहुत बहुत प्रोग्राम देविच। सतेंद्र सरताज की आवाज़ देविच गीत सुनना चाह रहे हैं सज्जन राजी हो जाए। बड़ा प्यारा जहा सुनेहा सानू यह वैसट अफ्रीका तो आया, सैरा लियोन वैसट अफ्रीका के इलाके चो शेख जियाउर रहमान सुन रहे हैं प्रोग्राम में। तो बड़ा प्यारा जहा कुछ बोल भी लिख के भेजे ने, हथ फड़ते बीबा मर्ज ना पुछ ना अर्क पीला मैनू कुछ भी नहीं, ना कर बर्बाद दवाइया ना टीके ला मैनू कुछ भी नहीं, मैं मर्ज इश्क विच बीमार पिया मैनू यार मिला होर कुछ भी नहीं। शुक्रिया इस सुनेहे नूं भेजण दे लई। ते लो तुहाडी फरमाइश ते सतिंदर सरताज दी आवाज़ दे विच अगला गीत सुणांगे। शामिल कलन जी ताज मुहम्मद अंसारी ते गुलाम साबिर राही नूं, महराज जहां जी नूं भी आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड तों प्रोग्राम सुन रहे ने, इन्हां दा भी स्वागत। अगला गीत सतिंदर सरताज दी आवाज़ च।
1: प्यार हुंदा फुल्लां तों मलूक सोहणिया

चटके मार दा चटके ने मेरा दिल फटके आ निकित चलिए चलिए नहीं आजा नहीं आजा नहीं आजा, नहीं आजा।

0: प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत है जुड़े ने साडे अगले श्रोते भी फोन लाइन के जरिए कर दें जी उन्होंने गल स्वागत जी थोड़ा बहुत बहुत
1: हाँ जी नमस्कार हरप्रीत जी।
0: नमस्कार जी की हाल चाल?
1: बड़े वधिया जी।
0: दसो केड़ा गाना सुनाइए?
1: मलोड़ तो बोलदा
0: जी। जी पुष्ण जी स्वागत थोड़ा बहुत बहुत। दसो केड़ा गीत सुनाइए?
1: जगमोहन कौर जी दसा दो कुंड विच नहीं लुकदे सजना नैन कुवारे।
0: वाह जी वाह। लो जी फिर जगमोहन कौर की आवाज दे नाल वध रहे हैं जी प्रोग्राम दे समाप्ति दे वल ते शुक्रिया पुष्ण जी थोड़ा बहुत बहुत। जगमोहन कौर की आवाज सुनदे हैं जी ये अगला गीत।

फुटबॉल दी लेके छापा चले लुट के सब कुछ ले गई जट दा ककर हाना पले लुट के सब कुछ ले गई जट दा ककर हाना पले कुली जुली गहने पाते बिकिया पीड़ी मूड़ा कुली जुली गहने पाते बिकिया पीड़ी मूड़ा नी दस क्यों पाया सी नी दस क्यों पाया।

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव दी बुद्धि

0: अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ए पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द दी विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीवन दी सोझी पैदा हो गई है। मैनूं हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस परथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुरपूरा भेटियो वडभागी मने पया परगासा, कोई न पहुँचण हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनों आत्मक जीवन जीवन का सलीका बख्शदे हन। उस दे सारे पाप ते पापां दी सारी मैल दूर कर देंदे हन अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये सारे उस दे काबू विच कर देंदे हन। गुरु अंगद देव जी दे मन विच सदा आत्मक सुख वस रहा है, जिस दे कारण गुरु संसार दा दुख दूर करदा है। गुरु नौ निधियां दा दरियाओ है। गुरु असां संसारी जीवां दे जन्मां जन्मां दे माड़े कर्मां दी मैल कालख धो देंदा। ऐसे गुरु अंगद देव जी नूं दिन रात आत्मक अडोलता अते प्रेम विच टिक के सेवना चाहिदा है। ऐसे सतगुरु दा दर्शन कीतियां जन्म मरण दा दुख कटिया जांदा है। भट जी इस प्रथाए बचन करदे हन, अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै, गुर नाम नि दरियाओ जन्म हम कालक तोवै। सो कहो टल गुर सेवियै एहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। विचार अधीन शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी फुरमाउंदे हन कि मैं अपने ऐसे गुरु जी तों कुर्बान जांदा हाँ जिस पूरे गुरु जी की कृपा नाल मेरे हिरदे रूपी घर विच आत्मक आनंद बनिया रहिंदा है। इस लोक विच भी आत्मक अडोलता दा सुख मैनू प्राप्त हो गया अते प्रलोक विच भी ये आत्मक आनंद बनिया रहन वाला है। अपने सतगुर कै बलहारै, आगै सुख पाछै सुख सहजा, कर आनंद हमारै। रहाओ। विचार अधीन शब्द विच गुरु पंजवें पातशाह बचन करदे हन कि ओ परमात्मा परमेश्वर उपर मैनू निश्चा हो गया है। जो सारी सृष्टि दा सिरजनहार है, सब जीवां दे दिलां दी जानण वाला अंतरजामी है, ओही परमात्मा मेरे सिर उत्ते राखा है। जदों तो मैं सतगुरु दी शरण पै के गुरु जी दी चरनी लगा हाँ उदों तो मैनू प्रभु जी दे नाम दा आसरा मिल गया है। परमेश्वर दे नाम दा

नू लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। इस शब्द गायन की तासी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

होमे हाजात है होमे कर्म कमाए होमे बंदना फिर जो नहीं पाए होमे कथो बुझे किरसन जमी जाए होमे होमे दीर्घ रोग है दारू की समाए होमे दीर्घ रोग है दारू की

कुड़ राजा कुड़ प्रजा कुड़ सब संसार कुड़ मंडप कुड़ माड़ी कुड़ बैसनहार कुड़ सोना कुड़ रूपा कुड़ पहननहार कुड़ का कुड़ कपड़ कुड़ रुपया पार कुड़ मिया कुड़ बीबी खप हो कार कुड़ कुड़ ऐने हो लग।

कवन उपमा देओ, कवन सेवा सरेओ, एक मुख रसना रसो जुग जोर कारे। हुन मन बच क्रम जान अनत दूजा।

गुर रामदास सबिद मान्यो मान तब ही पयो परसान राज जोग तख्त दियन गुर राम।

0: रड जिसे तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अबर अनल अनाद कियो सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो सुर नर सपत समुंदर के तारे तिर पवन जा सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पे हो शब्द गुर सरवण सुनियो बिखते अमृत होए हो नाम सतगुर मुख भने हो लोयो होए हो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पवे
1: जाम गुरु हुए वाले तने क्या गारे दीजे जाम गुरु हुए वाले लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु हुए वाले ज्ञान और ध्यान आनन पारे जाम गुरु हुए वाले शब्द साखी सो सच्चे कारे जो गुरु गुरु है न जपे दास पाठ बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दो थे रहे
2: गुर बिन कोर दार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अग्न कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखियो नौ कियो ते अके अथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कल युग सुनत समाध शब्द जिसके रे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तेहने रे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
3: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो कुत्ती जो प्यास पियूष पीवन की बंचत सिद्ध को बेद मिलायो पूरन पो मन ठोर बसो रस बासन सोजो दहन दस्तायो गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जल्यन तीर भी पास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
4: समर्थ गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासुर एक समान त्यान सो नाम सुनै सुत पान डरयो पन दास सुहास जगत गुरु।

0: की परस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरियो।
1: अब रखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख पारे कर आज फुंद्रो।

0: मुग्ध मन भ्रमत जो नाम गुरमुख भजो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर।
1: नानक नाम निरंजन जानिया किनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायरा तिन शब्द सुरत के नीवर खाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जे कश कहे ना जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारन का। अब गुरु रामदास का मिले बड़ाई।
2: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पासे ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नासे। कब कीरत जो संत चरण मुर लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रासे। जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिन गुर अमरदास कै गुर रामदास।
3: सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बला शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जर्म कर्म

भूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पात कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पात कीरत की गोरे रामदास।

दर्शन परसुआ गुरु का जनन मरण दुख हुआ सिफत खसामी नूर अरसों कुरसों तदठी सची पातशाह मल जनन जनन दी सजन सच्चा पातशाह सिर संग जिस पास बैठिया सोहिया सब नंद सजन सच्चा पातशाह सिर संग जिस पास

పహల చోపడు ఎక్క ఓంకార్ సద్గురు ప్రసాద జోహర శూల సంత భగత తిని సర్వ పాప నివారి हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर शिव संत भगत तिनकी सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा पाखण हम तारी जन्म जन्म की लागी देख मोरचा लग संगत साध सारी ज्यों कंचन बसंतर ताया मल काटी कटत उतारी हार हार जपन जपू दिन राती जप हर हर हर और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हम मारी हर हर आगम आगाद बोधा अपरंपर पुरख अपारी जान का कृपा करहु जग जीवन जान नानक पाज सवारी हर हर आगम आगाद बोध अपरंपर पुरख अपारी जान को कृपा करहु जग जीवन जान नानक पाद सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेमासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर से है संत भगत तिनकी सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी।